धूल मा पलहंग लबदा लुपाम सु मान बसरे फिगे थोले रगा सनाम सुगे आंग बसरे।

0: कुमुदिनी
1: इनिंथौ करी सनाया थंग ताक पिगदबा
0: नना ओइबुङ लाकलमबरा
1: लाकलमद्री इनिंथौ
0: लुरे हे अतो तौदोरिबसे आइखोइ इसिल इनाव मशेल मक अमन अमबु नुंसिनादा इरैपा कांखोंग साइहलमलगा लाकलबसिमकतादा निरम सिदसु आइखोइ मशेल खोजेल लिंगजेन चिनदबदगी थांग पाइनरकतना मयाम ममांग सिदा सांगतादुना तोकपर करिनो खंग्रेन हे तौरि
1: सनाया थंगता पिरिबसिबु
0: यामुंग मार्जित की पुक्षेल मता सिदि यामुंग इपा इमा शक्तुन लेरबनी को खन्नुन छाउनिंग बकोंगाई खंगलपन नम लोई दौरी करम नो ओकमिन नबाई खोई दि नोम नत्रबसु नोम दि मचा नरकनि ऐ खोई इनाक त लेदुन मागी मागी सगै ना तै थादोकलम ऐ खोई की फनबत होतनरिबा इनाउ नर सिंगिदमक हाइला कांदी खकपि शी हाइना हाइ बबु थुइन ताविदिने
1: इनिंग थौ वाफा मसिबु
0: यामुंग मार्जित त पिथो ख्रेदना पिजौने काइदिने अदुद खून तति फजौ हाइबा शान जबछारी सही मंगा मंगा निंथौ ओइन सिंगांग नबबु सोइनबदगी मखोइ पुंबा शी योरिबनी हाइबसी मखोइ ngamna काउख्रेने
1: फरे कैदौरगे निंथौ यामबुंग अनिना चानाना पुक्सेल अमत ओइरबदि अफाबनी कैनोने
0: ngai खोने अइना हाइबसीना यामुंग अनि चानखरे हाइबकी तमक कलकलुबगी वा नत्तेने कुमु चान बुचान नबिदुना ऐखोइ मशेल अशी पुक्सेल अमत ओइन पालबदि कनाननोने लक्ष खुदुम सल्लगदबसी
1: इनिंथौ इबुंगो
0: अदुदनहे उक्ता सिंगसे अइन थाजब इनम नमदे मतुंग सिददी इरै पाक्षिबु येकनब मिरै बाक मचा सिंगि मकुत्तगी अइन कन्ननब होनरि वशिदा अपन ब खजिकतंग का हे पिरक्लब अइदी हंदक्सि इसिलि नाउ का येंगलम नरोय दबनी हे
1: छना पुक नि तप थबी ओइनिंग थौ फत खिद्रब अवागी मकुत्त सि खरबा इमाई पागे अवाब मैसाक पु काउथोक जा छना चरोन गी थौगन लेंग दन फंगजब तन तो लबिन इंग थन पुकनिंग फाथब ngam जरि बनि अदुका हौजि पु अमु
0: हा करी हाय ब कुमुदि नशा तगी येंग न पुरोय बगी मफम द अदुगुम ब वाहि सिंग दो हंदक पुदि हाय खरबसु मटुंग ददि नंग बियमन गंभीर सिंहागी मफम द अमु खन्न तहन गदवाहि नंग खंग दवदि नंग ऐगी इमा इपागुम न मैते कया कया गी ममा मपा कया कया एक नबन ओट नैदुन हट खरबनी आइ बसि
1: इदिन थौइ बमो
0: खादुना हौजिति नहाक नरे पाकी वाखल नतन नरनाई गी वाखल खनब नरनाई गी दमक वाजन बकी मतम मदो थम लोइ दबनि
1: इदिन थौ
0: ऐ नहाई बसि नहाक न गंभीर सिंहा गी पुनसि गी लोइ नबी ओइ गदब लेरबति नरनाई गी कपलिब अदुगी महुत नरे पाक नरम दम गिदमक नमित्त कि नपी ताब तम गदबनि कुमु करिगुम मद नहात न मदुंगम लोई दबले रबदी नंग सनिग म नमित्त आई गिनाक तकि सखि बयागनि
1: इनिंग थौ लंगज खि बखि बि अपंग बिनि खंदु नंगाक पि लाय गुम लबई पुरोय बगी सनाया थंग बुंगाक सब ngam ब पिनबि पंग लबि न नाय न खोंग कोन दु नाय जरी इनिंग थौ
0: यमुंग लाकमा लेंसिन बिरक्सी यामु खुदा सोम द लेंसिन बि शना या थंग करी ताक पि गदब ताक पि सि दो यामु
2: याम गि बो
0: याम
2: मणिपुर शना ले पापु करी करम तौरे हायरगा येक नब आवाद गि मुन सि गे खन यामबुंग चौजित कि मफम द चंगजरु बनी ने हे नयाम बन अदु गंभीर सि
0: याम
2: यामबुंग दि अहल गि मतम ओइर पसिना लेमहुरी ब यामबुंग गि पुन सि एसे आर सिलेत अनुवराजबारी यमश्याम लग श्री गोविंद लिंग सिंदुर इवोगी सेवाद मतम लीलनी हैन सनायत अरे पत्ता पीरेन है
0: वफम मसिबु यमुंग मग्न हेक
2: यमुंग योगी द्रपदी नयाम न निंजरी बतबक से पंखो पंगम गनी हैब नयाम न खन मंगम द्रेन है गंभी पोकन फम इमा मणिपुर न इकाई फिर खुंख्रिबसे नयाम ई इरानी ने मरम मशलेबना औजिक्षे करी करम तो सिगे आइबसे इनाउ गतननि मदुगि शुनि लाखिबसे नयाम
0: शनाया थंगबुदि ताकपिरि अदुबु थोख्रिब थौदो कसिदा यामुंग हलगि मराल याउ याउ दे हाइबदि यार नसी मणिपुर न मशियौ न पुथख्रिबसे ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯛꯇꯒꯤ ꯐꯖꯅꯗꯕ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯣꯏꯊꯔꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤꯗꯣ ꯌꯥꯝꯕꯨꯡ꯫
2: ꯆꯨꯝꯃꯤꯗ ꯏꯅꯥꯎꯅ ꯈꯜꯂꯤꯗꯣ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦꯕꯨ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯨꯝꯕ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯅꯔꯁꯤ, ꯏꯁꯤꯜꯂꯤꯅꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯦꯛꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇꯒꯤ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯂꯦꯡꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕꯩ ꯊꯧꯗꯥꯡꯅꯤꯗꯣ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯌꯥꯝꯕꯅ ꯅꯤꯡꯂꯤꯕ ꯈꯤꯕꯤꯛꯁꯦ ꯊꯨꯡꯍꯟꯒꯦ ꯊꯨꯡꯍꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯏꯅꯥꯎꯗ ꯂꯩꯔꯦꯅꯦ, ꯅꯌꯥꯝꯕ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯎꯄꯥꯏꯁꯤ ꯎꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯒꯝꯕꯤ꯫
0: ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯁꯅꯥ ꯌꯥꯊꯪꯗꯨꯕꯨ ꯅꯅꯥꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯏꯇꯤꯛ ꯂꯩꯖꯗꯨꯅꯅꯣ? ꯌꯥꯝꯕꯨꯡꯒꯤ ꯊꯧꯒꯜ ꯐꯪꯖꯧ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯕꯗꯤ ꯅꯅꯥꯏꯅ ꯆꯨꯝꯅꯇ ꯇꯨꯡ ꯏꯟꯖꯒꯗꯕꯅꯤꯗꯣ ꯌꯥꯝꯕꯨꯡ꯫
2: ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯠꯇꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜ ꯂꯩꯊꯣꯛꯅꯔꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ? ꯅꯌꯥꯝꯕꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯂꯦ, ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯖꯌꯦꯟꯇꯤꯌꯥꯒ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯂꯥꯜ ꯑꯗꯨꯗ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯊꯤꯔꯛꯈꯤ, ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯅꯥꯎꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯗꯨꯅ ꯖꯌꯦꯟꯇꯤꯌꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯐꯥꯔꯒ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯇ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯈꯤ, ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯥꯍꯤ ꯉꯝꯕ ꯃꯤꯡꯊꯣꯜ ꯐꯪꯂꯕ ꯏꯅꯥꯎꯅꯤꯅꯦ꯫
0: ꯌꯥꯝꯕꯨꯡꯅ ꯄꯪꯊꯥ ꯃꯊꯥ ꯐꯒꯠꯄꯤꯔꯦ,
2: ꯑꯩ ꯏꯅꯥꯎꯒꯤ ꯅꯇꯤꯛꯅꯒꯨꯟ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯈꯪꯏ, ꯁꯛꯇꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯏꯅꯥꯎꯅ ꯂꯧꯔꯕꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯅꯌꯥꯝꯕꯗꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯒ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯗꯣ, ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝꯕꯨꯡꯍꯜꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯅꯥ ꯊꯧꯒꯜ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ, ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯅꯥꯎꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯦꯡꯅꯕ ꯑꯋꯥꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇꯒꯤ ꯃꯨꯟꯗꯨꯅ ꯃꯤꯇꯩ ꯏꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯊꯤꯔꯕ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯑꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇꯗꯤ ꯈꯨꯠꯂꯩ ꯊꯨꯅ ꯀꯨꯞꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯣꯒ ꯑꯩꯕꯨ꯫
0: ꯌꯥꯝꯕꯨꯡꯅꯗꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤ, ꯅꯅꯥꯎꯕꯨ ꯍꯥꯏꯖꯧ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒꯗꯤ ꯃꯌꯦꯛꯀꯤ ꯁꯨꯝ ꯊꯤꯒꯠꯂꯨꯔꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝꯕꯨꯡ ꯑꯅꯤꯅ ꯃꯥꯏꯄꯨꯅꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯅꯥ ꯌꯥꯊꯪꯅ ꯅꯅꯥꯎꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯕꯅꯤꯅ ꯅꯅꯥꯏ ꯅꯅꯥꯎꯅ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯏꯊꯧ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ, ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝꯕꯨꯡ ꯑꯅꯤꯁꯨ ꯂꯩꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯇꯧꯗꯅ ꯏꯄꯥ ꯏꯃꯥꯁꯛꯅ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛ ꯇꯝꯅ ꯂꯦꯡꯊꯣꯛꯄꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯅꯅꯥꯎꯅ ꯍꯟꯒꯠꯆꯅꯤꯡꯕ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯊꯣꯛꯂꯕꯗꯤ ꯃꯩꯇ꯭ꯔꯕꯥꯛ ꯁꯅꯥ ꯐꯝꯕꯥꯜ ꯊꯛꯇ ꯂꯦꯡꯈꯠꯄꯤꯅꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯤꯗꯣ ꯌꯥꯝꯕꯨꯡ꯫
2: ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ, ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯃꯗꯤ ꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯈꯪꯅ ꯁꯥꯈꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯤ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯗꯣ ꯊꯝꯈꯤꯁꯤ, ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯏꯅꯥꯎꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯕꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯉꯝꯕ ꯌꯥꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯝꯅꯇ ꯋꯥꯔꯤꯅꯕꯅꯤꯗ꯫
0: ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯁꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝꯕꯨꯡ, ꯊꯕꯛꯁꯤꯗꯤ ꯂꯦꯡꯐꯗ꯭ꯔꯕ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯏꯊꯧꯅꯤ, ꯉꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯒꯤ ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ, ꯅꯍꯥꯟꯃꯈꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝꯕꯨꯡꯍꯟꯒꯤ ꯄꯣꯏꯔꯩ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯛ ꯂꯩꯖꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ, ꯌꯥꯝꯕꯨꯡꯅ ꯁꯅꯥ ꯌꯥꯊꯪ ꯑꯗꯨꯝꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯕꯅꯤꯅ ꯅꯅꯥꯎ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯅꯔꯁꯤꯡꯍꯥꯒ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯁꯅꯥ ꯁꯪꯒꯥꯏꯗ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒ ꯍꯪꯒꯠꯆꯔꯒꯦꯗꯣ ꯌꯥꯝꯕꯨꯡ꯫
2: ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅꯤꯅ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ?
0: ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯚꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯤ ꯌꯥꯝꯕꯨꯡ꯫
2: ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤ, ꯃꯍꯥꯛꯇꯗꯤ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯁꯣꯝꯗ? ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯗꯕ ꯅꯔꯥ ꯌꯥꯝꯕꯨꯡꯒꯤ ꯁꯅꯥ ꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯕꯨ ꯂꯦꯡꯉꯛꯄꯁꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯇꯕꯨ ꯎꯈꯤꯗꯦꯗ꯫
0: ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯔꯝ ꯆꯪꯒꯗꯒꯦꯅꯦ ꯌꯥꯝꯕꯨꯡ? ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ, ꯌꯥꯝꯕꯨꯡ ꯍꯟꯅ ꯐꯖꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝꯕꯨꯡ ꯃꯧꯔꯨꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯄꯣꯛꯄ ꯀꯩꯐꯥ ꯁꯅꯥ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯅꯅꯥꯏ ꯏꯆꯦ ꯏꯅꯥꯎꯕꯨ ꯍꯥꯠꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯦꯛ ꯉꯝꯃꯤꯗꯅ, ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜꯅꯤ ꯌꯥꯝꯕꯨꯡ꯫
2: ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯇꯥꯔꯦ, ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯀꯩꯐꯥ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯆꯥꯛꯀ꯭ꯔꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤꯗꯣ ꯏꯃꯥ꯫ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯕꯁꯨ ꯈꯔ ꯃꯔꯩ, ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯌꯥꯝꯕꯨꯡꯗ ꯊꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯨꯔꯨꯔꯅꯨ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯗꯤ, ꯂꯥꯟꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤꯅꯦ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕ꯫
0: ꯑꯗꯨꯅꯕꯨ ꯅꯅꯥꯎꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯇꯣꯛꯆꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯅꯤ ꯀꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯗꯗꯅ, ꯌꯥꯝꯕꯨꯡꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯤꯕꯗꯨꯅꯤ ꯌꯥꯝꯕꯨꯡ꯫ ꯒꯝꯚꯤꯔ ꯁꯤꯡꯍꯥꯗꯤ ꯂꯪꯖꯔꯛꯄ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯒꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯅꯗꯦ,
2: ꯒꯝꯚꯤꯔ
0: ꯃꯤꯠꯁꯨ ꯊꯨꯞꯇꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯖꯗꯦꯗꯣ ꯌꯥꯝꯕꯨꯡ꯫
2: ꯒꯝꯚꯤꯔꯁꯤ
3: ꯌꯥꯝꯕꯨꯡ, ꯅꯅꯥꯏ ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯆꯪꯖꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔ ꯌꯥꯝꯕꯨꯡ?
0: ꯏꯌꯥꯝꯕꯒꯤ ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯆꯪꯂꯛꯎ ꯆꯪꯂꯛꯎ ꯏꯕꯨ, ꯌꯥꯝꯕꯨꯡ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯨ ꯅꯍꯥꯛꯄꯨ ꯎꯅꯅꯤꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯂꯤꯕꯅꯤꯅꯦ, ꯏꯅꯥꯎꯅ ꯂꯦꯡꯉꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯔꯦꯗ, ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯏꯕꯨ, ꯎꯅꯔꯨꯔꯕꯔꯥ ꯅꯍꯥꯛꯄꯣ?
4: ꯏꯌꯥꯝꯕꯨꯡ ꯅꯅꯥꯎ ꯆꯠꯆꯔꯨꯔꯦ, ꯅꯅꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯋꯥꯒ ꯀꯣꯝꯄꯦꯅꯤꯒꯤ ꯁꯥꯍꯦꯕꯁꯤꯡꯒ ꯀꯁꯥꯔꯒꯤ ꯇꯤꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯡꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯔꯦ,
0: ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯨꯕꯨ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯀꯔꯤ ꯀꯝꯗꯧꯅ?
4: ꯅꯅꯥꯏ ꯆꯠꯆꯔꯨꯔꯕꯅꯤ, ꯅꯅꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯋꯥꯅꯁꯨ ꯀꯁꯥꯔ ꯂꯧꯁꯤꯟꯗꯨꯅ 아이코이 뿜무시부 락신게 토랑럽부 오염래 아마론드나 사입싱어 신의수 아와싱어시부 머니 뿔르기 딴톡르가 마이테이글레박 록신게 쩟부자니 라이기 농담덕이 땡골라니도 마팜마두도 탱나바덕이 란 차이나바니
0: 아아아 마카타무 마카타무 따시부
4: 란팜마두도 까부기 라미네 구동 그직 잡아 헨키와 나나이 사입싱 어톡 구동 티브는기 마두드나테 컴페니 길싱바 사헵수 파비크라말레기야
0: 오
4: 아두나 아이코이나 나나이 사헵싱고 란 방비드나 마코이기 파키벌루 칭바두 핵간 미르버디 마코이 컴페니나 아이코이나 마니푸르 록신게 하이바마탐다 나나이싱 마코이기 레이제바 쿠추 쿠라이 란미 코고포마팅 방제게 한긋절이염
0: 어두디 이나오이붕어 고동자버시 팡링에 옛나버기 마코따기 이레이 빡시 물하우나나버 헛나파이나 아, 가리 하이게
4: 야몽 이래 이 바쁘 얘기나봐 아마다기 문나봐 호나보다 미톱 아마다 아무 정적하다봐 하이적하다봐 레이러버디 남들어버수 이탄따기 남자봐 이팅 부독라가 이래 이 빡 이름 덤기다 먹다 타와이 타독해버나 토이나 밤자 있나 나온나라
2: 아, 이나옥 두은긴 나라 하이버도 쉬워이라
0: 야몽
2: 가이동의 뽕높함람담마 쉬워 먹당 아와드기 문방암거덕에 하이나 능나리바 혼날이 범했단 맛이다 능력 까했나 봐 신도 우리 불안해 하이리봐도 뭐
4: 깜도 봐 아이나 마사다기 옌바 옛나바 아와하기 마품다 정제드나 마레이 박 마름덤부 까톡뿡은 봐 마자티기 아와땡 타골 톡사하다 봐 닝토기 땅벌 턱텅은 봐 에코이 과이부슈 미나이 미나이 오이루시 하이나 호비리브라 호직추
2: 예 까야드 턱시가 시나이 키드럽은 오네시 난가 잡마나라바디 쇼아이시다 호시마 쿠톡나가다 우리나 시리 아, 시는인데나 야묵나마 코이싱시 쟁닝드바 먹다나 라이닝 크러게 해내 딱 비리고세
4: 닝펌토이 닝펌토이나 마나마닌 나이다 온톡도 찍나 라이가 따이나나 니가 따이나라바디 와와 라운랍두는 비담벌싱하부 모이테이 샤나 땅벌 후란마 타키바 투림카이 강나라까다 우리나 시리
0: 그리 깜도우바 이봉아
4: 컴비드리브라 얌봉 얌봉 졸짓나 비탐벌부 아와기 마카 타버닝토우 오이루 하이나 타드나 옛나바 아와기 마품나 정적해드나 얌봉
0: 그리 아이코이 까나슈 강한나나 로우나 따비레드나 얌봉 아이코이 마셸 쿠라키 이나 라이샤 아이코이 아이코이 뜨나 망자바 뜻났다나 마루다기 토락바 팟다바 포울 마카이나 이레이 빡나 하우식 파워버까리 오이니 강나드리 이샤 이샤기 옛나버 시용나 팔락드레 아망부터 오이레 하이브시야무
2: 타저드레이부 혁특가시도 오이게더블 레이트레다
0: 하 이붕어
4: 야무
0: 호직디 아와드 넣다나 곰퍼니 샤협싱 숭아욕나버 따레다나
4: 야무
0: 이실리나오기 랭퍼드라바 이타우 하이버도 오이레다나 호직디 기이러버라 내 이붕어
4: 야무 나나우 나르기 학장다 아끼버기 새로 퉁비름데 어두부 사나야등 딱비리베시기 마뚱인나 성자르클라바 사협싱기다막 딜라인 란품시다디 사나자른다 피가옥사는 이제게 양봉
0: 이나오 코이나 시떡 시하이르가 마루에 나야 한바다부 까리기 아목
4: 양봉 사나스런기 통사하게
2: 이모 널싱
4: 양봉
2: 이나오도 콜크라헨 크래 나야 한바부 와로우그누코
4: 양봉
2: 나야무나 빠붕보이가 짠라닝 타우기야 시행가마서 아막도 오이르바디 많이 볼사나라 이빠꾸 옛나보기 마쿠따기 문누라마이때 이자아띠 이가에 굽나바가 악두나 나마 이빠꾸 오이제로꾸
4: 야몽 나나오나 사오구나 망오이나 키드나 타우글온 까이키바 뿜바 컹제다바 나나이니 나삐우고 야몽 나나오나 구름절이 야몽

0: 哎，该叫我的东西呢？后边我被哪个十列都来得的哈？生活的呢？一梦的那屋来不呢？哎哎，不不能个让路红不生路被俺们破了破都，一说给他们不呢？那屋给没拿得呢？生路了生路了，走了走了。
1: 后边都过来生了个
0: 啊。
1: I did like or I remember the gi, Pupuda wa am the hungi hina lagli bane. Pupuga wari saba ya bro.
0: Kari hi ya duni hai gin he, Isuga wari saba ba, Kari nunia.
1: A do bro pupua. I quit yourself science gi ozana nea. Manipur gi wail tau dagi matang the waring ama irak o hide e. A do I ima the hung but the su kang de hai. Babana su napu the hung so hide e.Madi tabok atom chile hai. Nung tiging ang tangan tahit at sakit.
0: Hoini, hoini. Hera, adugi buo pupu lady sidi. Laibaka malaya di. Watok lan toki karigi. Wayan tau da hai bsi. Ah, matai tai ne degi. Laibak kudingi lay na bangakani. Ah, ses. Manipur gisu. Mamang aginin tau palingay. Madugi mamang apun bastiese uidingay pawa.Makan makan ni lengan lon, wayan tau dah lelam lim ni ni aha.
1: Aduh di pupu
0: ah.
1: Nih tau paling ni jadi wayal tau dah kita bagse, kena kena anak kadai itu ramzano.
0: Ah, nih tau paling ni jadi wayan tau dah kibik kia supa tau bu mukukse nih tau nuguai. Aduh ga, mahaki makad lelam menteri pamnai berkaya agar loyna na wayan loy sengda pangtuk nerami ni hai ni he.
1: Kari kari wantok lantok da, waya toram zanu pupu.
0: Ah, adugi di, makan makan laikre. Lam tugi matang da muk naba yet nabagi. Sagai natai khat nabagi. Huran cinti, mi hat mi pungi. Kari karagi, otok na yam kraponi da. Hairib sing se, nintau palingi da. Nintau pamlaiba sing na, kunungi loi sang da, wayan za tharami. Ah, se, sairap loi sang.Pacaloi sengka hairib si. Ning tau palingai Manipur gi wayan sanggi maming ni niya.
1: Kari gino pupu o wel sang aniling lam ni dubo.
0: Se. Pupu hai ge munna taro. Se. Ngasai gi charab loi sang hairib si dana. Laiba ki wantok lantok tagi na. Lanai ge thokdo kuran sinti. Mihat mipun khanat say na ba. Klain singgi wayal chata ba. Aduga.Pacaloi sang hairi basidana. Nupi nahaga marilai naba watok singgi wayan sa tharamini niya.
1: Maduna taba atai sulai robu poa.
0: Lady, yamna lady. Maduna laibaling tau yobu nate go. Se, nahagna tabada nungsu nungai gadaba. Kangjin bada kana gadaba mahan haige go.
1: Haibi yobu poa.
0: Manipur gi, kwaidi ki chauba kaitien se. Kwairamban kaitien hairi basini.Masi, nupi sing tegi kaitini haidana, maming laiba laibak singgi puari da, yauruba kaitini ko. Kaitin sida pamlibi nupi singgi marakta, tolakpa khanat chaynaba tolakpa gi wayel di, pasaloi sangda hekta yogdi. Ahan bada, paida haiba pamnaiba amana, kaitin manung da wayel cha tharami hain he.
1: Magi wayal sang di kadai da saram zano.
0: Magi di top na wayan sang hai ba ama. Leram mi hai ba ipu koi thenga rakti.
1: Adu di kamay na kadai da wayal liba.
0: Ahan singa libi ramba wari larik da thenga bada. Khoi ramba ngay ten manung si da paida pung hai da na ma pham ma ma kaktu na tham lammi. Madu da mahaak na pham laga. Khanari ba yenari ba anidu gi warul taaraga.Warosan purak naba wayan bazani. Ah, hujik Syed Minar Kiliba Juvaraj Tikendrajit Thangal Jeneral Anibu Parsi Taukhiba Mapam Niharib Se Phaida Bungoi Rami. Matamdu da Khwairamban Kachin Sisu Maswai Da Ui Rami Hairin He. Aduga Karigumba Phaida Na Wakai Na Bangam Lagtawa Watho Ui Rabdi.Pacaloi sangda pukhatuna wayan sa thai hain hei.
2: Hai ma, isu nang di asapo ka sabalak diye diye na puho wari sudna lay rapo rea. Bobong na nea lupak da na puna ngarang purapa isu gi ngamok to thamlamba ni ko. Apok le kai tina basa lukhi kya doi
0: ni. Hai, kadai le karigi tineru doi nu ni haa. Taha tahari du karino hai ba.
2: Hei, मनिंग लेकाई अमुजाओ की मसान उपादो लेकाई दगी तांधुक लनी है ना मायूम थोगाई रनी है तो नगरांग ना हाँ दगी इरांग ताऊरी सिद्धी मौई मकूदी काइम तो ताबी रम द्रबो
0: है करी नोनी थरो आई दी कदाई दगी तार दगी आई दी नगरांग तम्हल लगी ना हाँ क्या दी नंबुंदा लड़ी दुदी
2: पाउची तो का हाँ ना दना अमो तो ये लोई ने रपो ओ लेकाई सिगी पुमांग से मांग थोली बे मयाम दो अमुजाओ की मसा मिखू इतनो ओइरम मे दना मा दिने हौजकी मयाई का ब करी करी नोय दु का पचा बु ओइरम माने ने मताउ दि इमा ले मान देना बो तो कोनन कलव की मेंबर्स न पारी ये मेरा पाइबी के का अदेगी मयाम ngaranga ing si tinadana khanare khun si da mahak leiradi khun si gi haurak liba ngang sing je tora tu na mang batare hainare
0: hush kuri nu ni hari wa siwa ma gi mi khu hai du bu wa phana ing tapagum tawida
2: e mona singau la kai du ira me
0: e
2: kana gi le kai si gi mang na ri ba nganu yen ising sing na ba injin ya silinder ka ka mang na ri se ma ya am puna mok chi man huran bo ira me ta na
0: ha
2: ai di kon sang gi pham da khin ba injin nganu ka huran ba do kari ma khui gi cctv hai bra adu da ying lu ba da ma na hing nong yai da पुखी बगी मम्मी तारम ले तना क्लब तो वकल ए बा
0: हाय मा हाय मा हाय मा मारी थौना बु फरम ली ने हाय सिन दि
2: ओथो न म एक सेन तारम खरे
0: हां
2: मान ने मी गी सो लोली बगी का खत लगा इंजन थंग धोरक पा गा नु गा दु बोरा द हा पग पुथोर को तो फजन उखर जानी दा ले काई सिगि ने न हा मसा सिन सिन फार ग ने ये दु न हंग बदा लुई ना है दो रखता ना ताऊरी ने मिसे
0: ही ना कोई दी पुलिस तामत रिपोर्ट ताऊ दबो है रिश्वो
2: आई कोई ना पुलिस तर रिपोर्ट ताऊ बका नंग दिया था
0: होई नहीं
2: ताऊ हो दे
0: ही
2: अमो तो ये बा मापा तो ना मरो लमा मचा कंखट पसीना माँ ना मचा तो की पया पहने ले करे आधे दी कना कना दनो ताक तो ना मचा पुबी रे दनो ताक लुप देगी क्लब किसी का तरी कोई अधेगी खर को खलू रे है ने अधरी मधे दी कई दरे मयाम साउना रे एडो अंगरे इसे मधु देगी ने
0: करी नूने हरी वाशिबो वाटोक से लाइन लो यारो इको लेबा की लो हाइब म लेरी मसे कान ब चुम लो इको थरो
2: खंग दे खंग दे हौजिक से लेकाई पुलग ने मयुम थुगाई दुन तान थो कि न बगी वारी लो दौरी बने
0: हे
2: मियाम न गंबरा मखोई मपा मसा न गंबराई दो येंग न बतारी
0: दना
2: हुजे अतु गने ओ मसवाई से मोय मपू सुने यावीर अनु अहल मोय न लेम न लेबीरो नहा सिंगी थबक निने को
0: हाय हाय ngai khoni ngai khone tharo kari ki tumin na lem na le thok tu na le ge dori bunone ha asoi ba aran ba uro makta da thabak se nahaga mai chau chau na makok chin tu yau dori nahag na choirak pa lalak pa hai ba sida ai su jenerak ta ba yaroi ni hai ba
2: oi ne
0: ngai khong ngai khong ngai khong ai na khan ba da na khoi gi si seiram kan bam yau rin he उरान चिंथी तो बु वोगेरा मयाई का बस चिंजाक साब बु वोइरा बसु लेका ये क्लब ना न कोई मेरा पाई भी नहीं एक तब फाब पुन भई आदि हाय बस सिमक्ती ऐ शु हाय रोय तो बु तो बु वायन चट्टा बा लेका इन लोग वारी अपना चेरा पीरी बनी हाय दुना मयुम मकई ठुगाई दुना तांतो पो हाय बदुदी लोगी मींग यारो इन्हें थरवा मधुनी मोप जस्टिस हाइडिप्स मदो सुमोई को इसुम सुम न लेकाई न रान बतार कनी पुलिस तत्ता खोतु ना कांगलोन सुम न मुक्त चथन अब होने सिको
2: होजी को कम दे उन्हें पुलिस तार लुधोरी नो है बा नते मसानु पादु न मीने एक क्लब की अंगांग सिंग दे मुन क्रे लुसिन क्रे नरांग न हाँ दे न चापु थोड़ा ओ ऐ दना मयाम न इरांग होरी सिने
0: मी ngai kho ma bo nang su na khoi ma ya pai bi gi parside ni hari da na matang se yo ra di kup na khana ba sang
2: hoi
0: sum na mak ta bu khudam sang dam yau na mara lai ra ba mi ama lai kai na bu hoi ro
2: la
0: nai na bu hoi ro ha re hai ra di police ta pi ga da ni ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯅꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯐꯥꯔꯒ ꯋꯥꯌꯦꯟ ꯆꯠꯊꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛ ꯈꯣꯠꯇꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯂꯣ ꯈꯨꯠꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯑꯦꯐ ꯑꯥꯏ ꯑꯥꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯍꯧꯁꯤꯀꯣ
2: ꯑꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯣ
0: ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯂꯣꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯅ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯈꯛ ꯀꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯔꯨꯝ ꯑꯌꯥꯡ ꯃꯦꯔꯤꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯀꯦꯁ ꯂꯧꯈꯠꯇꯨꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯁꯤꯡ ꯊꯤꯒꯠꯆꯔꯅꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯔꯤ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯆꯤꯡꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯃꯥ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯐꯥꯒꯠ ꯀꯧꯈꯠꯆꯔꯅꯤ ꯃꯗꯩꯗꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯆꯨꯝꯅ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟ ꯄꯥꯏꯔꯦ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯤꯆꯪ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯀꯅꯥꯅꯁꯨ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯣꯕ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅꯦ ꯊꯔꯣ
2: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯅꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯤꯈꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯃꯁꯣꯡ ꯐꯪꯒꯠꯄ ꯃꯇꯧꯁꯤꯗꯅꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯃꯃꯨ ꯁꯠꯂꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ
0: ꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯃꯛꯇꯗ ꯊꯣꯛꯂꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯁꯨꯅꯦ ꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯏꯕꯣꯜꯗꯣ ꯇꯞꯅ ꯏꯪꯅ ꯑꯩ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯒꯦ ꯅꯪꯁꯨ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯣ ꯃꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯐꯥꯊꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯧ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯊꯕꯛ ꯍꯧꯔꯗꯧꯅꯤ ꯃꯔꯥ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯂꯣꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯕꯨ ꯀꯟꯈꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯂꯩꯇꯦ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯟꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯧꯔꯤ
1: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄꯨꯄꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗꯣ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯄꯨꯄꯣ ꯍꯜꯂꯛꯂꯒ ꯁꯥꯕ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯉꯥꯃꯨꯛ ꯆꯥꯔꯒꯤꯒꯦ
0: ꯆꯠꯂꯣ ꯆꯠꯂꯣ ꯆꯠꯂꯣ ꯆꯥꯔꯨꯔꯣ ꯆꯥꯔꯨꯔꯣ ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯊꯥꯔꯣ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯅꯦ ꯇꯥꯅ ꯐꯝꯈꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯤ ꯊꯣꯛꯁꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯍꯥꯛꯇꯤ ꯋꯥꯈꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯥꯊꯈꯣ ꯀꯣ
2: ꯍꯣꯏꯅꯦ ꯃꯣꯏ ꯄꯨꯄꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯕꯨꯗꯤ ꯇꯥꯒꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯅꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯁꯣꯝꯗꯗꯤ ꯂꯨꯇꯣꯟ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ
0: ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯍꯧ ꯂꯥꯕꯗꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯅꯈꯣꯏꯗꯤ ꯏꯪꯊꯒꯗꯕꯅꯤ ꯅꯈꯣꯏꯗꯤ ꯇꯨꯃꯥꯡ ꯌꯦꯡꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯁꯥꯎꯕꯕꯨ ꯐꯥꯊꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯁꯨ ꯄꯦꯜꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯕꯁꯦ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯆꯨꯝꯅ ꯂꯣꯒꯤ ꯄꯔꯝ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯕꯅꯤꯅꯦ ꯊꯔꯣ
2: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯈꯜꯂꯤꯕꯣꯠꯅꯤꯅꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯕꯨꯅꯦ
0: ꯑꯗꯨ ꯑꯗ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯊꯔꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯤꯈꯨ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯐꯪꯗꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣ ꯅꯝꯕꯔ ꯋꯥꯟ ꯃꯍꯥꯛ ꯍꯨꯔꯥꯟ ꯆꯤꯟꯊꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯆꯥꯡꯗꯝ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯝꯕꯔ ꯇꯨ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯌꯣꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯌꯥꯔꯤꯄꯣꯠꯅꯤ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯅꯤ ꯇꯣ ꯃꯁꯤꯗꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯣ
2: ꯑꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅꯗꯤ ꯆꯩꯔꯥꯛꯁꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯄꯤꯍꯟꯁꯤ ꯁꯤꯅꯤꯅꯦ
0: ꯆꯩꯔꯥꯛꯇꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯠꯅꯔꯣꯟ ꯄꯔꯤꯡ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯊꯤꯒꯠꯄꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯈꯨꯗꯝ ꯆꯥꯡꯗꯝꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯋꯥꯌꯦꯟ ꯁꯪꯗ ꯂꯥꯟꯈꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤꯅꯦ ꯃꯗꯩꯗꯤ ꯋꯥꯌꯦꯟ ꯃꯄꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯖꯁꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯆꯠꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯦꯞꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥꯂꯨꯛꯀꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯞꯁꯤꯡ ꯄꯨꯟꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯍꯧꯔꯗꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯎꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯐꯔꯦ ꯐꯔꯦ ꯅꯍꯥꯛ ꯊꯣꯛꯂꯝꯃꯣ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯏꯕꯨꯡꯗꯣ ꯑꯩ ꯍꯜꯂꯛꯂꯦ ꯊꯣꯔꯛꯂꯅꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯇ ꯂꯩꯔꯝꯃꯨ ꯍꯥꯏꯌꯨ
2: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ

0: हदबो मपमसे एक योरक पग तुझंब मपादो योरक पग वकल मांग की बदे कंगाउदे
1: इतेमा ननाउ सिंगना अंगांग वोई की बना इतेमा बु मुन्ना सक खंग जा होग्रे ननाउ सिंगु आप पियु को ननाउ सिंगी तुंगी मित नाकुंग ओय होंगना नबा इतेमा बु कनानो हाय बदो सक तक पीरमो इतेमा गी होग्रबो पुन्सी वारी दो ननाउ सिंग दली पीरमो
0: निमित्त
1: इतेमा
0: पुन्सी की इहान हान बो ओइना इम्फाल दलाक्तना मोंग बहन बो खुरम जब निंथाउगे कोनुंगींग बलाक्की बनमेने
1: इतेमा

0: हेलो
1: साक्ष आरबरा
0: साथी दादी
1: आईदी नरांग सुसादी हाँ सनी मम्मत फोक्ते नंगते
0: सारश माहू खंगते अतो दा नंग चाक जाओ दाना साथी मम्मत खे ऐसे चालर हो
1: हे नंगते साओ आई बुदी असोय पाखर सासन मधु दा पुक थन कतुना साथ बने
0: अतो दासु खर दोर सुसाओ बा दान हेक साथिन खै ऐ चार
1: रधा
0: चागद्रो हायो नंग चाग चागद्रो हायो से कोमो
1: रधा नंग ऐ उदेव छि नुवाइब्रा
0: नुवाइरम गनि खनब्रो यम नुवाइते ऐं चितम थवाइ बियाते ओ सम मिटु छंदन नुवाले
1: ऐ सुने तुम तो भैया थे, मची सुनी।
0: तो, दा, इन लोग लाख बीरो।

0: Modern design, advanced tech. Explore Maruti Suzuki Wagon R. Now comes with a true tall boy design, strong look and robust design. Advanced K-Series engine, ideal start-stop technology and safety features like 6 airbags, AVS with AVD.
1: Get attractive offers up to ₹52,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced level 2 ADAS, yes. Smart power tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
3: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
4: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
5: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: अदोमन थोरम ताबिरी बसिया कस्वानी फालगे एफएम संगाई चैनल देगनी हौजिक ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस विंग की कंट्रोल रूम देगी फंगजबा ट्रैफिक अपडेट मियाम द मुक्तंग पाउदम जरी इम्फाल मनुंगी ओइना पाउदम जरबदा नीति आई पाचो थेक जंक्शन नसी की ओइना पोस्ट ऑफिस माइके सोम देगी लाखपा लंबी असी मया ओइरप चिल्ली क्वाकैथल क्रॉसिंग गिदी थुदोकपा चिनबा लैतबना लंबी सिंह नॉर्मल ओइना दुमक चनरी Western Gate Kangla Junction asi ki oina neti ai pacho thek mai kai som degi lakpa lambi asi tamak mai oirap chilli kaisampa junction asi ki oina wahingbam lekai mai kai som degi lakpa lambi asi mai oirap chilli LIC crossing amadi chinga crossing ki oina thoidok pa chin balai tabana lambi sing adumak normal oina chatneri hain haibirei matanga sida hauji hauji ki oina fangjaba traffic update miam da paudam jabaloi jari

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो, गुड आफ्टरनून लेडीज, की थारमनी
1: मैडम तुम जिंदगी सनातन तो दे रही थी
0: सनातन भी गुड आफ्टरनून लेडीज की थारम द तराम नोक चरी करम वाफम थम भी कने
1: पुछी ही अहम बने फंग जरी से मेरा
0: यम नो आई जे खै गनो ब मरुप अमा सु थिंग न जब बंगसी हाय बियो सनातन भी
1: मैडम हैन हाइजन बदी ए नी दे तो जर पर सु फंग कनो फंग बदी ओई दे सिना हम बने द मैडम हु दिख से इस पर्सन पिकनिक कुंबर सप मतो हम फंग बसि का पा का पा खले ओई दना
0: हाय हाय
1: संगा गई अदो सुंदांग खलक पछिदा मकोइना थई जाम ओंगा थार का डांस तो तो ग हलेबा अदो नैना दुदो मकारी जी सिस जो याम यांग थोबा मंदा अदुदो सुन मकोइ सुरी दो ताब याउना रगदि अदो कितन हंदा विवाह शुरू का गाड़ी दुम इशा जो कोई बचत पर दुम स्कूल तन्नरी वा तन्नरी ने जाओगे अदा दम अदो पाम दब देगे दो हाइनिंग बादोगा ईरिक्शो थोड़ी बा तेनोगे सिना ने मुझे छह जाम उंगा उंगा थार के चलने ये बा दस रोक चे गाड़ी सिन बनी ना हाईवे की तो गाड़ी सिन बनी ना अभी तो चुम पाम दब गये तुम मैं आम चुम आ कोई ना ये रामो दा करी हाई दो इनो हाई बंग खंडे ली दो की प्रोग्राम से आम नुआई ने सुताजे दाईना मच्छी दी पंथों गाई एंगे ना
0: ဟုတ်ရံနုံငိုင်ကြေကောရံတာဝရပါဟဲ့ဘတူနီစနာတုံဘီကေဆိုဒုကစနာတုံဘီနသံဘီရကပေါ်ဖမ်ဆူယံဖဇဘောဖမ်နီလမ်ဘီကီဖိဖမ်ဒီဖတ်ချက်လက်တဘဒုကလမ်ဘီဒီချောက်ထောရက်ပလိုက်တဘကွာအဒုကအခွိကီမစ်ဆင်ဟင်ကလက်ပါမဒီယုံမမဒဂါရီဆေအဒုကမတိကံခလေဟိုက်ဂျရီဘမစ်ဆင်ဟင်ကလက်ပနာမရမွိုင်ရကအဒုနဂါရီချင်ဘဂီချန်ဆီဟင်ကလက်ပနီနခုဒုံသီဘထောက်တနဘဂီဒမကချက်ဆင်မီနစီ ꯇꯥꯕꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯋꯥ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯃꯅꯤꯇꯣꯝꯕꯤ ꯁꯅꯥꯇꯣꯝꯕꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯣꯂꯔ ꯃꯅꯤꯇꯣꯝꯕꯤꯅꯁꯨ ꯁꯅꯥꯇꯣꯝꯕꯤꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯠꯄꯁꯤꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ
1: ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯀꯨꯏꯖꯔꯕꯅꯤ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯐꯪꯗꯕ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯐꯪꯖꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯖꯨꯟ 18ꯅꯒ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯊꯧꯕꯁꯤꯡꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯕ ꯑꯣꯏꯅ
0: ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯊꯧꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯅꯥꯇꯣꯝꯕꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯆꯌꯣꯜꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯁꯤ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯏꯁꯩ ꯃꯈꯥ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯛꯀꯦ
1: ꯍꯣꯏ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ
0: ꯍꯣꯏ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ 21st century ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤꯅ ꯁꯛꯄꯅꯤ ꯗꯤꯅꯦꯁ ꯇꯣꯡꯕ꯭ꯔꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯇꯤꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ

0: हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हेलो, गुड आफ्टरनून लेडीज के थोर रमनी का नाम बिरा बनाओ।
1: गुड आफ्टरनून मैडम।
0: गुड आफ्टरनून, वारी सुनो आई ना साना से तो कर रेडियो सेट इन आते की खजिक तंग थई दोक पियो। हाय हाय, वारी साना से का नाम बिरा बनाओ, कॉल तो बिरा क्लिसे।
1: मैडम आई कन ने हलुक तगी मेमिचा।
0: हलुक तगी मेमिचा। अदो एकोई की मैं मिचाना एकोई जो सोहे भी रे एकोई सो दम है दी दिलागी सेक्शन द पाई भी रिपा मतलब थोंग बसिंग द निंसिंग जगे तो का अमुक तंग मनी माला के खुदांग दिसु जीटीए मत तंग सुथा भी रा उदना
1: ताई
0: तुम लांग फंजे द मनी मनी लांग इन अब जब रेंज चौना तो मशीन लांग इन अकाउंट जब हाना दिखा मैम ना ताब तुम खंगजिन में नगद वही चार सिंह ना करी ताऊरी अधुगे चार सिंह बुवार वार टीम बीबा अधुगा अंगांग सिंह ना सु एक वही की मतलब मसिदा खर वाकल ताबी बा है बता रही ने को गाड़ी ना चिंग बताऊ बदा जैक्सन बीबा एक वही सु मतलब है बस ये मतलब ना कालक पन है त्याह जरी बको अंगांग वही बा मतलब अधुगे इन कालक पन मतलब मियाई चलक पा अधुगा हल वेरक पा अधुबु एक वही ना इसाना लक्षण बा मा याव रगा इसाना खंथा बा वाकल खंथा मिनर पमनमक थेंगना मिनसी अफबंगाक तो ओइमिनसी सोइदंगाम दना बहाइदना मेमिचाना फजबो आफम थंबिरकपने ना बोई ना सकपा यो नाम सुधीर ना सैरंग गोपी ना सैरंग सैनी तामी ना सी।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो, गुड आफ्टरनून लेडीज़ की थोड़ा हमने है बियो।
1: हेलो
0: हेलो ताजरी, गुड आफ्टरनून लेडीज़ की थोड़ा हमने का नाव बिर बनो।
1: फोन तो जरी भाई के रंगम दकी रंजना वाली
0: होय ngai rang pam de ki ranjana ranjana kari ho na biram bano
1: हम जी के तुम लोग था था बता कि तो हम यहाँ पोथारी ये तुम था जग में था
0: होय ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ
1: ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯆꯥ ꯅꯨꯡꯉꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯁꯣꯏꯈꯤꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯋꯥꯖꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯄꯁꯥ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯃꯣꯏ ꯁꯦꯝ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯄꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯣꯡꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯗꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦ ꯇꯥꯔꯦ ꯌꯨꯝꯕꯥꯟ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯈꯣꯡꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯗꯣ ꯆꯥꯔꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯣꯟꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯁꯦꯡꯗꯥꯅꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯈꯟꯅ ꯆꯪꯅꯕꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯍꯜꯂꯣ
0: ꯇꯥꯖꯔꯤ ꯇꯥꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ
1: ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯍꯜꯂꯛꯇꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯌꯥꯎ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯅꯤ ꯁꯨꯕ ꯌꯥꯎ ꯁꯨꯝ ꯍꯜꯂꯛꯇꯅ ꯂꯩꯕ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯄꯥꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯀꯝ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯁꯣꯏꯈꯤꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯨꯝ ꯀꯩꯁꯦ ꯄꯥꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯊꯨ ꯍꯥꯊꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯗꯅ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯈꯣꯡꯐꯝ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ
0: ꯍꯣꯏ, ꯔꯟꯖꯅꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯒꯨꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ, ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯟꯕ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯂꯩꯉꯣꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯨꯞꯄꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯑꯍꯜꯂꯃꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯀꯣ ꯍꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯣꯡ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛ ꯉꯥꯛꯁꯤꯟ ꯈꯔꯗꯤ ꯇꯧꯅꯔꯒꯀꯣ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯅꯤ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ
1: ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯣꯏꯗꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯔ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯃꯛꯁꯨ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯒ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯪꯕꯤꯔꯒ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯁꯣꯏꯈꯤꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯅꯤꯗꯥ ꯄꯗꯥ ꯆꯠꯍꯜꯂꯒ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯕꯨ ꯑꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯈꯟꯕꯤꯕꯗꯣ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯔꯟꯖꯅꯥ, ꯅꯨꯄꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯈꯥꯏꯗꯅ ꯑꯅꯤꯃꯛꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝꯕꯥꯟ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯅꯦ ꯔꯟꯖꯅꯥ?
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ, ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯦ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯔꯟꯖꯅꯥꯅ, ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯐꯝꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏꯕꯤꯔꯕ꯭ꯔ ꯔꯟꯖꯅꯥ?
1: ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯌꯨꯝꯕꯥꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯅꯪꯕꯤꯗꯣ ꯆꯠꯄꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯦ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯔꯟꯖꯅꯥ, ꯉꯁꯤ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯄ, ꯏꯁꯩ ꯃꯈꯥ ꯀꯃꯨꯛ ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤ ꯊꯃꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯧꯍꯧꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯕꯔꯂꯤꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯎꯃꯣꯅꯤ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯁꯥꯃꯣꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯍꯝꯃꯣꯝꯅꯕꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫

0: हेलो हेलो,
1: गुड आफ्टरनून मैडम, वांगो
0: गुड आफ्टरनून। कैन आई बी रबनो? हाय
1: जगी ने
0: बियो
1: वांगो जगी सहेन भी
0: वांगो देगी सखेन भी
1: आओ वायंग बम सहेन भी आता है।
0: हाय हाय वायंग बम सखेन भी सखेन भी। गुड आफ्टरनून लेडीज के थरम द तराम नोक चेरी करम बवा फम फंग तुपी गनी
1: मैडम ममांगा नमत बेबागी इनको मिरंगी मतांगा मा नगी बिदो अजनी मतांगो या मा अजय मुखा तो ना संतोष की लगा दी खंग दवा मैं आम दी खंगे रहा था दी सही है ना कहना गधरा ना खंग बाद में संभव तो कर पना
0: होय होय हो रही बा आई कोई की मिरोल सीधा है तारे ने कुआ मामा गए जाचा नरम बा हल लम्बनी पाइपल सिंह ना गांग नरम बा मिंगा उठा गा वधु का हाउन बी आई कोई की व्यवहार था गलोन है बता रहे ने कुआ होय मसी को मसंदोक ना बदम होना जरी होना जर के मतुंग दसु अदु दी वाफम सिना लोई बिरा ब्रा सके हन बिया
1: हाँ
0: वाफम सिना लोई बिरा ब्रा
1: ओ मैडम
0: होय याम नुमाई जे मथंगी चाय ओल्ड द मुक्सु कॉल तो बिरकते ना सरुक या बिरो सके हन बी मथंगी तारो एम मुंगाई मिनसी
1: थैंक यू मैडम।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो, गुड आफ्टरनून मैडम। मैडम
0: गुड आफ्टरनून। कना होय बिरा बनो
1: माय तो गरे जे सुनीता खुराय मोन लगे ने मैडम।
0: होय खुराय गोम दगे सुनीता नसी अमुक गुड आफ्टरनून लेडीज के थोरम द थिंग नजर याम नंगाय जे करम बवाफम थम बिगनी।
1: हाउ मैडम थगत तरी मैडम गो हम मो तो गा थाय खम मो तो तरी मैडम।
0: होय दम बसु
1: मैडम मसी जे सुन थाबी द पैसा छिन जे तकी मसी खज बहाय ता मैडम। अदो आइना थम जनिंग बा मना मैडम ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯥꯁꯦ ꯐꯔꯒꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ, ꯃꯥꯏ ꯃꯆꯥꯁꯤꯅ ꯐꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯃꯥꯁꯤꯅ ꯑꯄꯥꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯟꯅꯕꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯩꯌꯦꯕꯣ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯌꯨꯝ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯤꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯨꯄꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯃꯛꯇ ꯄꯥꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯦ ꯍꯤꯡꯒꯣꯟꯁꯦ ꯃꯥ ꯀ꯭ꯋꯥ ꯁꯤꯡꯇ ꯂꯩꯁꯣ ꯇꯂꯞ ꯁꯤꯡꯇ ꯂꯩꯁꯣ ꯗꯨꯀꯥꯟꯒꯤ ꯗꯦꯛ ꯊꯥꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯖꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯦꯗꯥꯝ, ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯜꯂꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯨꯝꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯅꯤꯁꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯆꯠꯂꯝꯕꯁꯦ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ, ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯨꯔꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯔꯨꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯃꯍꯥꯎ ꯇꯪꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯦ, ꯑꯗ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯗꯝ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯁꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯒꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯋꯥ ꯇꯂꯞ ꯁꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯊꯥꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯍꯟꯒꯅꯤꯗꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯨ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯖꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯅꯤꯁꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯊꯝꯕꯤꯗꯕꯀꯣ, ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯐꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯖꯔꯛꯄꯗ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯕꯤꯔꯤ ꯃꯆꯩ ꯁꯤꯃꯇ ꯆꯥꯃꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯆꯝꯕ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯨꯠꯇꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯆꯤꯡ ꯆꯤꯡꯗꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣꯀꯣ, ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯩꯀꯣ ꯑꯐꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯂꯩꯇꯦ, ꯑꯉꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕ ꯁꯥꯕꯤꯕ ꯑꯀꯣꯏꯕꯁꯤꯅ ꯃꯥꯕꯨ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕꯅꯤ, ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯑꯀꯣꯏꯕꯁꯤꯅ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕꯅꯤ, ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯉꯥꯡꯗꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯉꯥꯡꯅꯤ, ꯄꯦꯠꯄ ꯂꯩꯈꯣꯝꯒꯨꯝꯕꯅꯤ, ꯄꯣꯛꯄꯗ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ, ꯑꯐꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯁꯦꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯕꯤ, ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯏ ꯏꯆꯦ ꯁꯨꯅꯤꯇꯥꯅ, ꯑꯗꯣ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯐꯖꯕ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯏ, ꯏꯁꯩꯁꯨ ꯑꯃꯈꯛ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ, ꯍꯣꯏ ꯇꯔꯥꯝꯅꯣꯛꯆꯔꯤ, ꯑꯃꯝꯕꯁꯨ ꯑꯉꯥꯟꯕꯅꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯨꯅꯤꯇꯥ ꯅꯦꯄ꯭ꯔꯝꯅ ꯁꯛꯄ ꯔꯥꯖꯟ ꯌꯦꯡꯀꯣꯛꯄꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯗꯨꯒ ꯍꯥꯃꯣꯝꯅꯕꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕꯤ ꯁꯩꯅꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜꯇꯝ

0: ise ise tan je khiba galoi na ngasi gidi good afternoon ladies ki thauram lan thuk chaba mata ngasi de loi sinjeri ngasi gidi duty de library be engineer sing di el rosita madi ngangom joy chandra duty room management de library be sabnam takhel mayum telephone ok chikhibi thaudam nirupama thauram saruk ya bi duna madi thauram tabi tabi riba pumnamakpu amukahana thagachari thauram sandoktuna tahanjari basi आकाशवाणी इंफाल के एफएम संगाई चैनल दगिनी।
1: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: संगाई चैनल दिगे दोम नमक खल मथिल की थौरम के आताविरी हौसी कमुक मथंगी थौरम गीत माला की तमक वेलेंटिना दमुक खुशी नजरी।

शुक्रिया निरुपमा। नमस्कार साथियों, 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं संगाई चैनल के जरिए हमारा मनोरंजक कार्यक्रम गीतमाला, और मैं हूं आप सबकी दोस्त वैलेंटीना गीतमाला की रौनक के साथ।

दोस्तों, ये रंगीन गीतमाला की कुछ इस तरह कहानी शुरू होता है और आज कहानी पर ये है हमारा सदाबहार गीत, जो गीत सदा के लिए हम चाहते हैं सुनने के लिए बेकरार रहते हैं। तो क्यों ना सुना जाए ये पहला गीत, सदाबहार गीत। ये पहला गीत है अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में, समीर की लेखन में ये गीत है और फिल्म का नाम है दिल है कि मानता नहीं।

और दोस्तों, हमारे सदाबहार गीत की दुनिया ऐसी दुनिया है, लगती है मानो ये एक सपनों का दुनिया है। तो ये इस सपनों के दुनिया में और भी कुछ ऐसे गीत हैं जो दुनिया हमेशा हमेशा के लिए याद रखना चाहेगी। और ये गीत है मोहम्मद अजीज़ और साधना सरगम की आवाज़ों में, और इस दो गीत के लेखक हैं समीर, संगीतकार आनंद मिलन, और फिल्म का नाम है याद रखेगी दुनिया।

लगता है जैसे झूम उठी हो ये कायनात, गूंज उठी हो कहीं पर ये प्यार की, ये संगम की। और ये अगला गीत है दोस्तों आपकी के लिए हमारे सदाबहार गीत कार्यक्रम में, राधा का संगम, फिल्म से लता मंगेशकर के साथ शब्बीर कुमार की आवाज़ों में। ये गीत है हसरत जयपुरी के बोल और संगीत अनु मलिक द्वारा।

कार्यक्रम सदाबहार गीत में ये अगला गीत है अनुराधा पौडवाल की मधुर आवाज में जादूगर, जादूगरी इसी आवाज में जादू करता हुआ, उदित नारायण की ही आवाज में उनके साथ। ये दो गीत है जान की कसम फिल्म से, समीर के लेखन और नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में।

और दोस्तों, हमारे सदाबहार गीत ने सबके दिल के राज कह दिए हैं शायद। और रखिएगा दूसरे पल को आप ही के साथ, होगा फिर से मुलाकात। और रहिएगा हमारे दोस्त अभी के लिए निरुपमा के साथ अगले मनोरंजक कार्यक्रम के लिए। नमस्कार।

0: ਸੇ ਸਿਤਾਨ ਜਿਖੇ ਬਗਲੋਇਨਾ ਮਤਮਿਸੇ ਲਾਂਥੋਕ ਚਬਾ ਮਤਾਂਗਸ ਦਲੋਇ ਸਿੰਜਰੀ।
1: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
2: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: हेलो
1: हेलो,
0: हेलो, हाय, गुड इवनिंग. का नाम इबीरा बनो. करी हैवी बमिंग दो करी हैवी बा. ओ कोराई देगी नंदिनी. नंदिनी गसी दी फिल्म से खन बनु मिने कर म फिल्म से तावी कने.
1: ओ मैडम अरो रबी दाईगी ताजा गी मैडम
0: अरो बबी दाईगी. होय अरो बबी दाईगी कर म इसे वो भी रबनो.
1: जय कुमार सफा सलो को मसी की अथौ बता वो दो से जिन जिन गे इसा.
0: होय नमे छिगा मरी लेना ना.
1: हां मैडम.
0: होय अदु दी से सी तहन जरक पे यार अतरा नंदी. রেডিও তাবিব মাম আমি কি ইউটিউব কি লাইভ স্ট্রিমিং লাইব মাম পমক তামিনে কো.
1: থ্যাংক ইউ ম্যাডাম.
0: হয় তারাম নকচারি.

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो गुड इवनिंग असी मणिपुर फिल्म से खन बने मिटने कना ओइ बिरबनो
1: मैं असल बार कॉल लगा रहा हूँ ना कहीं समझ जाऊँ
0: हाय अजयम कम तो बिरे अजयम
1: हाँ मैं लाइक जाए
0: हाय यम नुंगाई जेंग असी एकोई की लाइव फोन इन प्रोग्राम से तो थिंग न जब कर फिल्म से इताबी गनी
1: यार सही जे नसी दिख रहा कि ना तब फाइ कर रहा इन कोई यार ताज़ा निगो यार हम जे वे इसे कोई के फिल्म जे अच्छी रह पुन सिया रहा है वह फिल्म तो दागी मैं हम सही चंद जाना सकता मुकबा मुनुकल है इसे तो ताज़ा की कितनी रात वो के में का सही चंद जाना सामान ने सही आने से इतना
0: असिरा पुंसी हरिबा फिल्म से देगी सरचंद्र ना सकपा खेत्री राबोत ना सेरिंग बदुगा सरचंद्र मा सामंग ना सेरंग बैसे से
1: हाय मैं
0: होय इसे इसी मतियम तंग मयाम तामिन से है बबु अजेम देगी
1: वही सही जे मतंग देवे ना जे मसी लोक सन इसे ये ताव दिया फा मंगन तो कुछ दन दवाई का
0: फरे फरे तो दिंग असी फजन ता थोक पिरो मथंग दम गंग असी गसी गिती आइना वइना मयाम द तहन जरके
1: हाय हाय बैठे ना जम जाऊंगा जे थाके जरे
0: हाय तराम नोक चरी से खुदोल तम जरी तामिनसी

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो, गुड इवनिंग।
1: हाँ, गुड इवनिंग।
0: हाय, कनाओ बिरो बनो
1: वांगु वारु कोक्तगे अभेचा।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो गुड इवनिंग
1: गुड इवनिंग मैडम
0: लाइव फोन इन प्रोग्राम मणिपुर फिल्म में से की थोड़ा हमने है भी हो
1: हाँ मैम तो था ऑल इंडिया रेडियो की स्टाफ को ना मक्को फुगल आता की थाप लगा फुगल आता की विक्रम ना इकाई खुन बहुत सारी मैडम
0: हाँ विक्रम बहुत सारी कोई गया इम्फाल की माइक दिखे इकाई खुन ना बहुत चली तरह ना चली है भी हो कर्म फिल्म में से ही ताबी करनी
1: मैम आई से कोई के कनोगे यात्रा नंबर वन की को ना बोले सब
0: खेलना सैरंगनी डॉक्टर विद्यापति शर्मा सैरंग बैसे तमीनरसी
1: थैंक यू मैडम।

कितना खूबसूरत एहसास है ना. इस गीत में भी कभी कभी जो है प्यार उसी चांद की तरह दिखने लगता है जो बादलों में छिप जाता है, लेकिन उसकी रोशनी फिर भी दिल तक पहुंच ही जाती है. जैसे आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है ना, किसी ना किसी तरह से आपके लिए मीठे सुरीले गीतों का पिटारा लेकर आपके पास तक पहुंच ही जाता है. आप सुन रहे हैं हर श्रृंगार कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. मैं हूं आपके साथ रितिका. और ये जो गीत बादलों में छिप रहा है चांद क्यों, फिर तेरी कहानी याद आई फिल्म से आपने ये सुना अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज, और इस गीत को संगीत से सजाया अनु मलिक ने और इस गीत को लिखा कतिल शिफाई ने.

बिल्कुल सच ही कहा है किसी ने कि मोहब्बत की पहली निशानी ही यही होती है, नींद कम और ख्वाब ज्यादा। हर धड़कन जैसे किसी का नाम लेने लगती है, और जब प्यार अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है ना, तो सिर्फ दिल ही नहीं, चांद तारे भी उस रिश्ते के गवाह बन जाते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

फिल्म मैंने मैंने प्यार किया से आपने ये गीत सुना है एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में, राम लक्ष्मण का संगीत और असद भोपाली का लिखा ये गीत।

दोस्तों हर श्रृंगार में आज बस इतना ही। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, जिसे आप सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत में बीते 12 वर्षों में जो विकास यात्रा का हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दौर देखा है, नए कीर्तिमान हमने देखे हैं, इस संबंध में आज हम कार्यक्रम में एक खास बातचीत आपके लिए लाए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बीते 12 वर्षों में जो पूर्वोत्तर भारत की बदलती हुई तस्वीर को हमने देखा है, इस बदलती पिक्चर को आप कैसे देखते हैं और किस तरह से ये संभव हो पाया है, किन कदमों की बदौलत ही हो पाया है?
2: तो पूर्वोत्तर भारत में जो विकास हुआ है उसके मुख्यतः जो कारण है वो सस्टेन्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा टारगेटेड प्रोग्राम डिलीवरी और तीसरा स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। और ये सब जो कार्य हुआ है इसमें कोई एक सिंगल स्कीम जो पूरी कहानी को नहीं बताती है, ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स का एक साथ समावेश होना, उनका कॉन्वर्जेंस होना जो ये चेंज दिखाई पड़ता है उसको दर्शित करता है। 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मैकेनिज्म जो 55 भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस वर्ष लगभग 1,00,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में इन मिनिस्ट्रीज ने अपना व्यय किया है। साथ ही साथ ऐसे कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, खासतौर पे नेशनल हाईवेज जहां पर 50,000 करोड़, SARDP नॉर्थ ईस्ट के तहत लगभग 4,800 किलोमीटर के कार्य पूरे हुए। साथ ही साथ भारतमाला परियोजना में 3,000 किलोमीटर के काम लगभग 70,000 करोड़ से की लागत में पूरे हुए। इन सभी कार्यक्रमों से रेल, रोड्स, एयरवेज, इनमें उल्लेखनीय इम्प्रूवमेंट आया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जहां तक हमारी कनेक्टिविटी का सवाल है, कई कैपिटल्स अब कनेक्ट हो गई हैं। साथ ही साथ 17 एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट जब मैं कहता हूं तो मैं सिक्किम को भी उसमें जोड़ रहा हूं, अष्टलक्ष्मी में राज्यों में 17 एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं। उड़ान के तहत 90 रूट्स ऑपरेशनल हैं और कृषि उड़ान स्कीम के तहत एयर फ्रेट चैनल को भी इम्प्लीमेंट किया गया है जिसके द्वारा पेरिशेबल एग्री प्रोड्यूस को फार्मर्स की इनकम्स बढ़ाने में उपयोग में लिया जा रहा है।
1: एक बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है जो पूर्वोत्तर भारत के विकास में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट में, पीएम डिवाइन। तो इस योजना के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे इस योजना ने पूर्वोत्तर भारत के विकास को एक नई दिशा दिखाई है और कैसे ये योजना काम कर रही है?
2: पीएम डिवाइन स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये हाल ही में लॉन्च की गई है पिछली फाइनेंस कमीशन साइकिल में। बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत समझ लीजिए एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से 500 करोड़ तक के बीच के बड़े प्रोजेक्ट्स, ताकि जो बड़ी गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको पूरी की जा सके, उस पर्पस से पीएम डिवाइन को लॉन्च किया गया। और इस योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स जो हैं वो राज्य सरकार के साथ में कंसल्टेशन करके लॉन्च किए जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ

0: पे उनकी बहुत डिटेल्ड मॉनिटरिंग करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं विभिन्न सेक्टर्स में रहें, जैसे हेल्थ केयर, टूरिज्म, एजुकेशन, आईटी पार्क्स, रूरल लाइवलीहुड, वैल्यू चेन प्रोजेक्ट्स। और इसमें ये कोशिश की जाती है कि सारे प्रोजेक्ट्स का साइट सिलेक्शन, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और टाइमली मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके, ताकि ये प्रोजेक्ट्स अपने डिजाइंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकें।
1: आपने हाल ही में अभी जून की शुरुआत में ही पूर्वोत्तर भारत में पीएम डिवाइन योजना के तहत सिक्किम का एक दौरा किया था और इसमें एक स्काईवॉक प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया था। थोड़ा हमें बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे ये परियोजना धरातल पर, जमीन पर उतरकर काम कर रही है और कैसे एक नए तरह से इस योजना से विकास को देखा जा रहा है और कैसे इससे और भी चीजों को, जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।
0: कई राज्यों में, इनफैक्ट ऑल दी 8 अष्टलक्ष्मी राज्यों का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत व्यापक है और उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर भी अपने फंड्स को इस्तेमाल करती है और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। बालेडूंगा में जो ये स्काई वॉक की आप जो बात कर रहे हैं, अपने आप में एक बहुत ही यूनिक और अनूठा ये एक प्रोजेक्ट है। हाल ही में वहां मैं जब गया था तो मैं आश्चर्यचकित था कि जो ना केवल जो स्काईवॉक वहां पे तैयार हो रहा है पर जो ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोपवे का, वो भी अपने आप में एक बहुत ही अनूठा है। ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज का वहां पर एक क्लिफ के ऊपर वो स्काईवॉक जा रहा है। मुझे लगता है कि विश्व में इतनी ज्यादा लीनियर लेंथ और इतना ज्यादा ऑल्टीट्यूड क्रॉस करने वाली ये रोपवे शायद ही कहीं विश्व में हो। डेफिनेटली ये टॉप 1-3 में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होगा और ये सब स्कीम्स इसलिए हैं ताकि वहां पर लोकल जॉब क्रिएशन हो सके, फुटफॉल बढ़ सके। टूरिज्म का बहुत एडवांटेज मिलता है लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल जॉब क्रिएशन में, तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा सिग्नेचर टूरिज्म सर्किट्स भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। 2 प्रोजेक्ट्स मेघालय में, सोरा सर्किट और माताबारी सर्किट त्रिपुरा में ऑलरेडी सैंक्शन की गई है, उसके प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है और उन सब प्रोजेक्ट्स से ये कोशिश की जा रही है जो हमारे माननीय मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर में कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले नहीं बन रहा है, जब वो एक पर्यटक अपने फ्लाइट से या ट्रेन से उतरता है तो उसका जो पहला कदम पड़ता है, चाहे एक लोकल टैक्सी हो या लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ में उसका इंटरेक्शन हो या बाद में होटल में उसकी, चाहे वो 5-स्टार हो या 3-स्टार हो, चाहे वो एक छोटी सी लॉज हो या होम स्टे हो, वहां जो उसका इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर, साथ ही साथ गाइड्स। और इसीलिए ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को वहां पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि हमारे सारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में कम्युनिटी लेड लाइवलीहुड को हम प्रमोशन दे सकें, खासतौर पे सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। और हाल ही में इस बजट में बुद्धिस्ट सर्किट के लिए भी एक घोषणा हुई है, उसके तहत भी आने वाले समय में एक वृहद कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसका इम्प्लीमेंट अष्टलक्ष्मी राज्यों में होगा।
1: आपने जैसे कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में बताया, लेकिन पूर्वोत्तर भारत एक और बीड़ा उठा रहा है, वो है पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में वो काम कर रहा है। ग्रीन हब के तौर पर बहुत सारे स्टेट्स उभर रहे हैं, सिक्किम के उदाहरण को हमने देखा। कैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मिसाल छोड़ रहे हैं और ग्रीन हब के तौर पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पर कैसे सामने आ रहे हैं?
0: हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों का बहुत योगदान है, ना केवल भारत के लिए, मैं तो कहूंगा पूरे विश्व के लिए, कि जो यहाँ पर ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, जो यहाँ की बायोडायवर्सिटी है, जो यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक्स हैं, यहाँ पर जो कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पर जो ओवरऑल एक इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब मॉडल्स हमारे सारे ग्रीन मॉडल्स हैं। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जब जो यूएसपी डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट है उसमें जो यहाँ की प्रीमियम वैरायटीज हैं, चाहे वो लेकाडोंग टर्मेरिक हो मेघालय में, या क्वीन पाइनएप्पल हो त्रिपुरा का, या मिजोरम की जिंजर हो, या ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम हो, ये सारी कार्यक्रम जो है इनका जो मूलभूत आधार है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। तो ये सारे कार्यक्रम ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ग्रीन ग्रोथ हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए नहीं, विश्व के लिए ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टूवर्डशिप को कंबाइन किया जा सके।
1: आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की और अष्टलक्ष्मी शब्द से हमारे श्रोताओं को बताया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार का फोकस है कि पूर्वोत्तर भारत पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का भी एक बड़ा हब बनेगा, इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत में इस दिशा में काम हो रहा है, तो कैसे आप बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज कितना अहम रोल अदा कर रही है पूर्वोत्तर भारत के डेवलपमेंट में, और सरकारी से कैसे देख रही है?
0: जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नॉर्थ ईस्ट में तैयार हो रहा है, उसी के अनुपात में अब बहुत जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर और बड़ी कंपनीज और छोटी एमएसएमईज भी जाएं और अपना इन्वेस्टमेंट्स करें। बहुत पोटेंशियल है ना केवल एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन में, बट टूरिज्म में, साथ ही साथ चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे हाइड्रो पावर हो, हर सेगमेंट में बहुत पोटेंशियल है। तो उसके लिए एक नॉर्थ ईस्ट का इन्वेस्टर समिट लास्ट ईयर हुआ था, लगभग 4.5 लाख करोड़ के कमिटमेंट्स, एमओयूज और लेटर ऑफ इंटेंट उसमें हासिल हुए थे। उन सभी के इम्प्लीमेंटेशन को भी बड़ी बारीकी से राज्यों के साथ में मॉनिटर किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आए और इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकें। कुछ स्टेट्स अपने स्तर पर भी सिंगल विंडो पोर्टल्स इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, उससे भी आने वाले समय में अष्टलक्ष्मी राज्यों को बहुत फायदा होगा।
1: एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है पूर्वोत्तर भारत के विकास में, वो है जो बीते सालों में शांति स्थापित हुई है, प्रॉस्परस एक हमने पूर्वोत्तर भारत को होते हुए देखा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है कि पूर्वोत्तर भारत में जो पहले अशांति और हिंसा थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कैसे गृह मंत्रालय के साथ मिलकर आपके मंत्रालय ने इस पर काम किया है, और कैसे जो विवाद थे, जो हिंसा थी, अशांति थी, उसको सुलझाने में बीते सालों में मदद मिली है, और कैसे इससे और विकास को तेजी मिल रही है?
0: गृह मंत्रालय ने कोऑर्डिनेट किया है समस्त राज्यों के साथ में, सेंट्रल एजेंसीज के साथ में, और उसी का परिणाम है कि आज शांति है। और उस शांति का जो बेसिस है वो एक सस्टेन्ड पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, डायलॉग्स हैं, और खास तौर पे एग्रीमेंट्स हैं। उन एग्रीमेंट्स के टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए डोनर मिनिस्ट्री का बहुत मेजर रोल है। उन डेवलपमेंट पैकेजेस को इम्प्लीमेंट करना जो एग्रीमेंट का पार्ट है, खासतौर पे लाइवलीहुड से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और ये इंश्योर किया जाए कि सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन कम्युनिटीज तक पहुंचे जिन्होंने इस एग्रीमेंट में अपने योगदान दिए हैं। और ये सारे इनिशिएटिव्स हमें हेल्प करेंगे आने वाले समय में वहां पर शांति को बरकरार रखने के लिए, और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी नॉर्थ ईस्ट की इन एग्रीमेंट्स के का एक मेजर आउटकम के तौर पर निकलेगा।
1: पहले कभी जो लुक ईस्ट का नजरिया था पूर्वोत्तर भारत का, वो एक्ट ईस्ट में सरकार ने बदला है, तो कैसे स्ट्रेटेजिक तौर पर इसको आप देखते हैं, इस रणनीति को कैसे सरकार पूर्वोत्तर भारत को इस नजरिए से देख रही है?
0: तो इस सिग्नल का जो अर्थ है वो ये है कि इट इज अ मूवमेंट फ्रॉम पैसिव डिप्लोमेटिक ओरिएंटेशन टू अ प्रोएक्टिव इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद द ईस्ट, एंड हियर नॉर्थ ईस्ट इज लाइंग एट द हार्ट ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। And it means that by strengthening the physical connectivity, promoting cross-border trade, people-to-people links, and integrating the region into a regional value chain with the Southeast Asia. And I think all the state-specific initiatives actually take us to that particular paradigm. And it's also essential that this approach recognizes Northeast as both a national asset as well as a gateway to external markets. And it also helps us balance the strategic and development priorities.
1: So, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का आप आने वाले समय में किस तरह का कुछ विजन के बारे में बताना चाहेंगे, और कैसे जो आज हमारे जो 8 राज्य हैं वो आने वाले समय में विकसित भारत में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं?
0: हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का बैठक हुआ था शिलोंग में। माननीय होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी, हमारे डोनर मिनिस्टर, साथ ही साथ समस्त राज्यों के गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ने उस बैठक में हमें शामिल हुए थे। और उसका एक सबसे मेजर जिस बार जो योगदान रहा है वो 8 राज्यों में को मिलाकर 8 हाई लेवल टास्क फोर्सेस बनाई गई थी जो चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा हेडेड थी, और उनमें दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को भी शामिल किया गया था। पहली बार ये प्रयत्न किया गया था कि हर राज्य अपने खुद के राज्य को ही ना देखे, वो पूरे रीजन को देखे, और उस रीजन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस इन हाई लेवल टास्क फोर्सेज में आई है। साथ ही साथ एक विजनिंग एक्सरसाइज हुई है जो 2043 का विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें विकसित नॉर्थ ईस्ट का क्या योगदान रहेगा वो भी इस लक्ष्य का पार्ट है। अब ये सारी हाई लेवल टास्क फोर्सेज जो बनी है इनका इम्प्लीमेंटेशन आने वाले समय में समस्त राज्यों को मिलाकर, यूनियन मिनिस्ट्रीज को मिलाकर, स्टीयरिंग ग्रुप्स के द्वारा होगा, और जिससे हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में आने वाले समय में ऑलरेडी विकास की जो गति है वो बहुत तेज है। हर स्टेट डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ हासिल कर रहा है, हर स्टेट पांच पांच छह छह साल में अपने आप को डबल कर रहा है इकोनॉमिक साइज में, तो ये सब और आने वाले समय में आगे बढ़ सके और नॉर्थ ईस्ट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन ओवरऑल नेशनल जीडीपी के कॉन्ट्रीब्यूशन में और आगे जा सके, इस सबका इसमें प्रयत्न पूरा शामिल है। तो आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा फोकस जो है इट विल रिमेन ऑन कॉन्वर्जेंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड ग्रीन डेवलपमेंट, सो दैट द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर इंटीग्रेटेड इनटू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी एंड व्हेन दे डू दैट दे आल्सो रिटेन देयर यूनिक आइडेंटिटी।
1: थैंक यू सो मच सर,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बारह साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: This is Akashvani. In this special series, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke, now we bring you an interview with R. Mukundan, President, Confederation of Indian Industry, CII. Interviewer is Shishir Sena, Journalist.
4: Namaskar. Modi government is completing 12 years. During those 12 years, we have seen various ups and downs in the Indian economy. We have seen challenges like COVID. We have seen challenges like Russia-Ukraine war and now the current West Asia crisis. Despite all those things, Indian economy has grown more than 7% during those 12 years. And now the expectation is it will grow at much faster rate. So what kind of role India Inc. has to play in this entire growth journey? To talk about all those things, we have with us Mr. R. Mukundan, President, Confederation of Indian Industry. Mr. Mukundan, thank you very much for joining us from Morocco and it's a pleasure to have you on the show.
5: Thank you very much.
4: Mr. Mukundan, my first question to you, how do you assess the Indian economy of last 12 years?
5: So I think a lot of positives happened, and if I were to say what are the way I would put sort of contextualize what has happened, you've already given the environment. There were challenges like COVID, external environment is very volatile, there's a challenge of AI coming in. What I think we have achieved is to have a more frictionless economy. There is less friction. And I'll explain what I mean by that. The whole digital payment, Jan Dhan, Jam Trinity, if you really look at it, it has reduced the friction in the economy. Also, the GST, for example, it's a landmark reform. It has ensured that, again, the friction in transaction of goods. If you recall, in the past, trucks would be waiting at state borders for hours. Today, actually, you can reach any part of India and has reduced logistic costs. I think the first F which they have achieved is to get to more frictionless economy. Second, I think what India has done is to use force multiplier, multiple force multiplier. And I'll give few examples. One is, for example, if you look at the way we have handled the PLI scheme, the defense exports, for example, 33 times from what it was at the beginning. So it's not a small feat to start from where we are and we are 33 times. People don't talk about it. And from a net importer, I think we are also now a good exporter of the defense equipment. Mobile phone, for example, has grown 6 times mobile assembly. Again, of course, aided by PLI scheme. But these schemes were important. They were thought of at various times. And various other elements of reforms were carried through, in my view. For example, the labor codes, the issue related to Bharat Mala Pariyojana, the Sagar Mala Pariyojana for logistics, PM Mudra Yojana, all these were parts of what I would call force multiplier. Add to that what Udaan scheme did for air transport, add to that what Smart City Mission has done to over 7,500 projects have been implemented with an outlay of 1.5 lakh crore. So all these adds up to what I would call the second part of the story, which is force multiplier. The third I would call is a factor social stability. I think while we do all this, if social stability is not there, it is not going to be good for any economy. I think, for example, several elements, PM Kisan Yojana, where almost 4 lakh or 4.1 lakh crore were transferred directly to farmer benefit. PM Awas Yojana, which is fundamentally over 4 crore houses have been sanctioned or constructed. And look at railway, for example, for the common man, Vande Bharat, 164 Vande Bharat services operationalized already and more coming in the way. And when I say social stability, it also has some business elements to it. for example, insolvency and bankruptcy code actually augurs well because it brings unproductive assets into productive economy, thus creating jobs. So again, that 12 lakh crores of stress debt were resolved. I think in addition to these three broad areas, which I explained, which is frictionless, force multiplier, and social factor stability, there's one key theme the government has done in the last few years, looking at opening India and bringing India to the world and bringing world to India through free trade agreements, through trade integration. And this has certainly opened up new markets for us that has allowed us to be resilient even when there were challenges on many, many fronts.
4: Okay.
5: For example, the India-UAE trade has already crossed 100 billion. Who would have thought UAE we would have 100 billion trade? And the ambitious targets which are being set for the India-UK deal, the India-EU deal, India-Australia deal also has been signed. New Zealand is in the works. In addition to that, I think the biggest of them all, the India-US deal, I think we're all working very hard to...
4: Okay. So you have given a very comprehensive details about the economic activities. And if I just sum up the answer which you have given, all the three F has translated into what we call as the faster growth for the economy. Now, coming to one big question, that how India Inc. is confident about making big investment in this fast process of economic growth?
5: So I certainly think if you look at the data which we have for the last 3 years, India Inc. has initially, of course, the investment, a lot of the investment heavy lifting happened from the government side through public investments. But I think the last 3 years, the private investment has certainly picked up. Let me just take an example of steel sector, which I think the largest of the investments are happening in the private sector. I think we are already 220 million ton. And by 2030, we will be 300 million ton. It's a massive investment program underway. So many of these investments have actually been cleared 2-3 years ago, and they're all under implementation. And as you would, if you look at the mobile phone exports, that entire investment has happened in the last 2 years. And we have emerged as the second largest exporter of mobile phones out of this country. From we were, I think, down at 10th or so at some point.
4: Okay.
5: So each one of them, I think we've done a taken leap. When I say taken a leap, it is not only the fact that investment is in place, the investment is at a scale which is very high.
4: Okay.
5: Which means no longer investing small, we are investing at a larger scale.
4: Mr. Mukundan, when we talk about India Inc. is making investment, as you rightly mentioned that during last 3 years, we have seen good growth and also good numbers. One of the big issue from the India Inc. is about the employability. Whenever you ask for people, are they really good for your sector or are they good for your company or not? Do you see the skilling program which has been introduced by Modi government has been helping you in a big way to getting employable people rather than just the people?
5: I think it's a very important question. I think we can't just say that, you know, we need to get people, we need to get employable people. TII itself, I think, runs about 60-odd model career centers. We have running close to about 12 to 14 of these skilling centers as part of the industry. And what we do focus on is to make sure that the people who come out not only have degree with them, but also in addition to degree are employable in the shop floor or doing the productive work. And that has come through several schemes of the government, including the scheme in terms of making sure that internship program, which is the new one which the government has introduced, where graduates and people who are about to graduate can come and intern with the company, not to get job, but to get the experience of real work life. And that sort of prepares them to go and join the company much easily. So this has been added on top of what we used to have in the past, which is apprentice training program and several programs. And I fully agree with you that we have to focus in, when I say social factor of social inclusion, we need to focus on employability and skilling. But in addition to that, I want to add one more point, Sushil. I think this is about whole startup ecosystem, innovation ecosystem, where we are not just promoting people who are looking for jobs, who are job creators. And I think if you look at the fundamental focus of the government in terms of the Mudra scheme, also the new RDIF program, which has come for innovation, where government is giving grants to startup companies, these are all great steps to make sure that we just don't focus on job creation. We also focus on job creators.
4: Now, coming to one of the ambitious program of this government is the PLI schemes in various sectors. If I can remember correctly, it is more than a dozen sectors where we are seeing PLI scheme. Among these sectors, which one you think has given much more than desired and which one has not given what was expected?
5: Any scheme, Sushil, I think needs to be managed in a way that identify and we modify and we nuance it as we implement. I think it can't be a static that we launch. So I think one of the good things with the government has been the engagement with government to sort of make sure that it's relevant for the time and relevant for the task it has to do. At least the way we look at PLI scheme is basically a risk reduction process. It is not about giving subsidy to industry, but you know, when industry does big investments, there are risks associated with it, and different industries have different types of risk associated, and government stepping in and ensuring that the risk is taken care of enables entrepreneurs and companies to invest. If you look at one of the big success stories has been electronics, massive growth. If you look at the mobile phone and also electronic exports, which is happening, I think it has really brought us pretty much in the whole element of what I would call as countries to contend with. The other one, which I'm very hopeful will be great success, is semiconductor. I think we cannot depend for chips on another country. Chip sovereignty is as important as energy sovereignty, as important as food sovereignty. We always used to talk about food security and food sovereignty, but I think now the war has made sure that we need to look at energy sovereignty. In addition to that is the data and data processing sovereignty, which is also important because data is a new oil, or the future oil, as we call it.
4: So you talked about these three sectors, but if I talk about the sectors where we still have to see a success of PLI scheme, what kind of changes you think should be done in those sectors to make PLI much more effective in those sectors? And also, please mention about the sectors where the PLI has not given the desired result.
5: I think if you fundamentally look at the PLI scheme where, as I mentioned, where we need to add some more improvement, I think we need to focus on what is the element of risk we are not addressing. And I think this would vary from sector to sector. The second piece, which I would also say, which we need to do a lot, work at the center has really happened well, but a lot of work needs to happen at the state level where the projects are getting implemented. And those delays really create issues for all of us. So where I think there's a PLI scheme, a lot of projects are on the way, and they would probably take shape as we work our way through. For example, if you look at solar cell, I think India cannot continue to just import solar cell from our northern neighbor. We need to have domestic capacity. If you look at the PLI scheme for battery and battery storage, these are all items where I think the government has initiated the step, but I think we need to do more to ensure that those investments take shape and move forward.
4: Okay, now coming to the infrastructure development, and where we have seen that during last 4 to 5 years, government has made good progress in the terms of capital expenditure. And it is always said that when you are putting money of 1 rupee in under the capital expenditure, it gives you a desired result of more than 3 rupees or 4 rupees. But at the same time, it also adds competitiveness to you as an industry. How this infrastructure development has added strength to your competitiveness?
5: So clearly, it's a great point you've raised. See, the point about where India needs to be competitive, in addition to several processes which government is trying to sort of remove the roadblock and engaging with states to be more, improve the ease of doing business, speed of doing business, is the energy cost and logistic cost. I think I did spoke to you about Sagarmala project, the Bharatmala project, these two projects which are massive investments in highway and port. Our big bottleneck to grow forward in terms of, I would say, our exports is actually going to be our port capacity, is going to be our road logistic capacity. You know, you just have to go in the highway between Baroda and Dahej to know that the 6-lane highway is now looking completely packed. Who would have thought when it was constructed, there'll be so much traffic on that. We probably need 2 or 3 more lanes in those highways. So in India, we fundamentally need to continue to invest in infrastructure. We need to continue to be more competitive. We had done a study between India and China. There's approximately 6% more competitiveness they have got in logistics and 6% in energy. Both, if we can get address it, we will be truly competitive vis-a-vis our northern neighbor, who is our only big competitor in manufacturing.
4: Now, coming to the investment part, from the foreign people, foreign investors. You talk to a lot of foreign investors. What kind of sense you are getting from them about investing in India?
5: So I think they are very excited. India is a large market. India is also one of the fastest growing markets. So they would want to come here. I think what we need to do for them is to sort of create kind of chauffeur service for them, because every country is different nuance, different elements of how business is done. I think that is something government is beginning to do. For example, creating key account managers who do end-to-end. Some states have done very well. For example, Tamil Nadu has got guidance, which does a lot of work in terms of engaging with investors to make sure their journey inside is. Gujarat has done exceedingly well in making sure the similar index B, as they call it, I think has been working very, very short, working closely with investors. All states have to do this.
4: But one thing we have seen, that we have a good gross FDI number. If I go by the FY26 number, it is around $95 billion. But net number is just less than $7 billion. What more to be done? I mean, you talked about the coordination and the better coordination between the state government and the central government. But apart from this, what more can be done to have the net FDI at the higher level?
5: So I think this piece about the gross FDI is the right metric to measure, because that is the money coming in. And you know, when investors want to have

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर एक बार फिर से मैं रितिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

तो दोस्तों गीत मेरे मन मीत में आज बस इतना ही। आप बने रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न केवल भविष्योन्मुखी तैयारी कर रहा है बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और लोकहित आधारित विकास के जरिए उसे सक्रिय रूप से संवार रहा है। श्री मोदी ने फ्रांस यात्रा के आखिरी कार्यक्रम पेरिस में बोंजूर मोदी आयोजन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत में पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुए बदलावों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद, हवाई अड्डा नेटवर्क और विश्वविद्यालयों की संख्या दोगुनी हो गई है, जबकि मेट्रो कनेक्टिविटी 4 गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और मोबाइल फोन बनाने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हिंदी में प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। बाद में प्रधानमंत्री स्वदेश रवाना हो गए। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा 3 मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की, जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी

0: परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। आज क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुके हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैकाल में भी आज ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi projected India as a global hub of innovation and technology while addressing the VivaTech 2026 summit in Paris. The Prime Minister said, "Technology can lead to progress only when it is democratized." Mr. Modi urged the global innovators to work with India and deliver for all. The Prime Minister highlighted that in the last decade, India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. Mr. Modi also held meetings with leading French business leaders to deepen economic and technological cooperation between the two countries. Prime Minister Modi has stated that India is not only preparing for the future, but is actively shaping it through innovation, technology and people-driven development. Addressing the Indian community at the Bonjour Modi program in Paris yesterday, which was the final event of his France visit, the Prime Minister highlighted that India's rapid transformation over the past 12 years.
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: Referring to the Bharat Innovates program in Nice and VivaTech in Paris, he said the world is witnessing India's growing innovation strength. Earlier, French President Emmanuel Macron thanked Mr. Modi in Hindi through a social media post. Later, the Prime Minister departed for India. Ministry of External Affairs has highlighted the key outcomes of Prime Minister Narendra Modi's visit to France. Briefing the media in Paris yesterday, Foreign Secretary Vikram Misri said the visit was centered on 3 key pillars: trade, technology and regional and international security. He said India and France jointly launched the Bharat Innovates initiative in Nice, creating a global platform for Indian deep tech startups. At VivaTech 2026 in Paris, where India was the AI country of focus, the Prime Minister underscored the importance of a human-centric approach to artificial intelligence and the use of technology for inclusive development. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has approved large-scale procurement of pulses and oil seeds at the minimum support price, that is MSP, for 4 states through video conferencing. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare said the procurement will be carried out under the price support scheme in Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. Uttar Pradesh has emerged as the biggest beneficiary under the approvals for the summer 2026 scheme. Procurement of 48,298 metric tons of moong, 97,970 metric tons of urad and 41,718 metric tons of groundnut has been approved for the state. In Gujarat, procurement of 18,250 metric tons of moong has been approved for the summer 2026 season. Minister Chauhan also approved an increase in the moong procurement limit for Tamil Nadu under the Rabi marketing season 2025-26 from 885 metric tons to 990 metric tons, enabling the purchase of an additional

नमस्कार, मैं यानी नाज स्वागत करती हूं आपका आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, जिसे ट्यून किया हुआ है आपने 100.1 MHz पर। घड़ी में वक्त हो चला है 11:11:20 और ये वक्त है आपकी पसंदीदा पेशकश निशी गंधा का।

यू टकराए राह में एक शख्स से, देखते ही देखते नैना दो चार हो गए। हम मोहब्बत को गुनाह कहते थे और देखो आज हम ही गुनहगार हो गए। था जुनून इस दुनिया को जीत लेने का, एक शख्स पे दिल हारे और बेजार हो गए। रख दिए सब उसूल जूते की नोक पर, हम अपने ही कायदे कानून के गद्दार हो गए। और सुनहले कपड़े थे जो शराफत के, इश्क का पान चबाया तो बस उनकी चाहत से दागदार हो गए।

दर्द ने सबसे पहले दस्तक दी और इस मन ने बिना पूछे दरवाजा खोल दिया। कुछ आंसू फर्श पर गिरे और कुछ यादों में रह गए। फिर प्रेम आया बिल्कुल धीमे कदमों से, जैसे डरता हो कि कहीं जख्म फिर से जाग न जाए। उसने कुछ कहा नहीं, बस पास बैठ गया और फिर उस चुप्पी में सुकून ने अपनी जगह बना ली।

उजाले में तो हर कोई हम कदम बनता है, मगर जो अंधेरों में हाथ थामे वो साया है। भीड़ में तो सब चेहरे बदल लेते हैं, यहां जो तन्हाई में भी साथ न छोड़े वो साया है। सूरज की तपिश में जो सुकून की छांव दे, जिंदगी के हर सफर में जो दुआ बन जाए, दुनिया चाहे रूठ जाए इस दीवाने से, मगर वो ताउम्र वफा निभाए, वो साया है।

ख्वाहिशें गिर गई थी मेरी सोने से दरवाजे पर, मैं उनको ढूंढ लाऊं तो तुम चले आना। तुम्हारे गीतों की धुन अब याद नहीं आती, मैं फिर से गुनगुनाऊं तो तुम चले आना। संभल गई हूं अब टूटे दरख्तों का सहारा लेकर, मैं फिर से मुस्कुराऊं तो तुम चले आना। और सहमी हुई हूं जरा सी अब भी कि थोड़ा इंतजार कर लो, मैं जीना सीख जाऊं तो तुम चले आना।

मैं कभी कभी सोचती हूं उन बातों के बारे में जो रह गई तुम्हारे और मेरे बीच। अगर हम साथ होते तो कितनी बातें करते। पता है मैं उन बातों को अब किसी और के साथ बांट भी नहीं पाती। लोग मिलते हैं मुझे पर मैं उनसे ठीक से मिल भी नहीं पाती। सुनो तुम लौट आओ ना किसी बहाने से, क्योंकि मुझे बहुत कुछ बांटना है तुम्हारे साथ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

सुकून में भर जाता है। जो शोर रहता था अंदर हर वक्त, तुम्हारी आवाज सुनकर धीरे धीरे मर जाता है। मैं फिर खुद को इतना सताती नहीं, हर छोटी बात पर यूं टूट जाती नहीं। शायद यही असर है तेरी फिक्र का मुझ पर, कि एक छोटा सा जुमला भी मुझे फिर से घर सा लगता है।

0: रात कभी कभी
1: वो आएंगे तो कयामत भी टल जाएगी शायद, पर उनके ना आने से हर लम्हा कयामत है। जिंदगी गुजर रही है तन्हाई के साये में, अब तो मौत का आना भी एक इनायत है। दिल के टूटने की आवाज इस कदर खामोश थी कि जमाने को लगा सब कुछ सलामत है, मगर मेरे अंदर जो रोज एक तूफान उठता है वही तो मेरी जिंदगी की असली कयामत है।

घड़ी कर रही है इशारा कि वक्त होने वाला है 12:50 और आप सुन रहे हैं निशिगंधा मेरे यानी नास के साथ FM गोल्ड पर दो नावों में पांव पसारे ऐसे कैसे वो भी प्यारा हम भी प्यारे ऐसे कैसे और सूरज बोला बिन मेरे ये दुनिया अंधी है तो हंसकर बोले चांद सितारे हजी ऐसे कैसे

मुस्कुराहटों के पीछे का दर्द छुपाया नहीं जाता, ये रोता हुआ चेहरा हर बार हंसाया नहीं जाता। लाख कोशिशें कर ले कोई जमाने को छलाने की, मगर आंखों का पानी पलकों में दबाया नहीं जाता। उदास चेहरे भी बहुत कुछ बोल जाते हैं, बिना अल्फाज के दिल के राज खोल जाते हैं। जो पढ़ सको इस खामोशी को ध्यान से, तो वो ही तन्हाई के सबसे गहरे जख्म टटोल जाते हैं।

देखिए जिंदगी में हर किसी को बस दो ही चीजों की दरकार होती है, एक वक्त और दूसरा प्यार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी का नहीं होता।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न केवल भविष्योन्मुखी तैयारी कर रहा है बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और लोकहित आधारित विकास के जरिए उसे सक्रिय रूप से संवार रहा है। श्री मोदी ने फ्रांस यात्रा के आखिरी कार्यक्रम पेरिस में बोंजूर मोदी आयोजन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत में पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुए बदलावों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद, हवाई अड्डा नेटवर्क और विश्वविद्यालयों की संख्या दोगुनी हो गई है जबकि मेट्रो कनेक्टिविटी 4 गुना बढ़ी है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हिंदी में प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री स्वदेश रवाना हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा 3 मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के तहत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अब हॉर्मूज जल डमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उन्होंने कहा कि ईरान समझौते पर बातचीत

के लिए उनकी स्विट्जरलैंड जाने की योजना है। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेस्का को 5-0 से हराया। आज क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे, वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुके हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर इस रात की महफिल में, जहां आप हैं मैं यानी नाज हूं आपके साथ। और एफएम गोल्ड पर शुरू हो चुका है प्रोग्राम गीत सुहाने। ऐसा करते हैं, एक मुलाकात रख लेते हैं, चाय की दो प्यालियां और कुछ सौगात रख लेते हैं। मैं भी उदास हूं तो तुम भी गुमसुम हो जाना। महफिले मुशायरा कुछ ऐसा इस रात रख लेते हैं। इस जिंदगी ने हम दोनों को बहुत गम दिए हैं, तुम रखो खुशियां, हम तजुर्बात रख लेते हैं।

वो काम भला क्या काम हुआ जिसमें ये दिल रो जाए, वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो आसानी से हो जाए, वो काम भला क्या काम हुआ जिसकी ना शक्ल इबादत हो, वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जिसकी दरकार इजाजत हो।

बड़ा नुकसान हुआ इस दिल पर एतबार करने का कि फिर किसी को मौका मिल गया हमें तबाह करने का, जिसके लिए बंद आंखों से हर राह पर चल पड़े थे, उसी ने आखिरी मोड़ पर हाथ छोड़ दिया वफा।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे।

स्वागत है आपका एक बार फिर। प्रोग्राम चल रहा है गीत सुहाने, जहां आप हैं मेरे यानी नाज के साथ। ये रात है लंबी इतनी कि ख्वाब में कट जाएगी, दास्तानें बढ़ चलेंगी और ये नींद भी ना आएगी।

इश्क में मरने का मजा कुछ और ही होता है जब कातिल खुद अपनी बाहों में सुलाता है। आंखों में उनकी अक्स देखकर दम निकले मेरा, बस यही ख्वाब इस दिल को हर पल आता है।

इस रंग से सृष्टि बनी, इस रंग में सृष्टि ढली, इस रंग की ये अहमियत क्या तुमने जानी है कभी। इस रंग पे मीरा मरी, इस रंग पे राधा मिटी, फिर भी क्या जान पाई तुम्हारे रंग के माने कभी।

या बदल गईं या पिघल गईं या गिरते गिरते संभल गईं या संभल संभल कर गिरने का अंदाज पुराना वो ही है। क्या अब भी उतना हंसती हो या हंसते हंसते रोती हो या रोते रोते हंसने में एतराज पुराना वो ही है।

इस दुनिया नाम के सागर में एक सुंदर लड़की रहती थी, जो हंसती थोड़ा कम ही थी, बस अक्सर रोती रहती थी। मैं कहता, देखो बात सुनो। वो हिरनी नजर उठा देती। मैं कहता, ना कुछ खास नहीं। वो भीगी पलकें झुका देती।

ये आंखें भी अजीब सी गुफ्तगू करती हैं जमाने से, वो सब कह जाती हैं जो छुपाया जाता है बहाने से। जुबां तो अक्सर खामोश रह जाती है डरकर, मगर दिल का हाल बयां हो जाता है इन नैनों के पैमाने से। किताबों से ज्यादा गहरा राज छुपाए रखती हैं ये आंखें, हंसते हुए चेहरे के पीछे का दर्द दिखाई रहती हैं ये आंखें। जो पढ़ सके इसकी खामोशी को ध्यान से साहब, उसी के लिए अनमोल तोहफा सजाए रखती हैं ये आंखें।

सच है ना, जब महबूब का साथ हो तो कुछ भी आधा अधूरा नहीं लगता, एक सिर्फ उसके होने भर से सब कुछ पूरा हो जाता है और दिल से बस यही अल्फाज निकलते हैं। न चांद की चाहत है न तारों की फरमाइश, बस हर पल तू मेरे साथ रहे, यही तो है मेरी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात कर विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न केवल भविष्य उन्मुखी तैयारी कर रहा है बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और लोकहित आधारित विकास के जरिए उसे सक्रिय रूप से संवार रहा है। श्री मोदी ने फ्रांस यात्रा के आखिरी कार्यक्रम पेरिस में बोंजूर मोदी आयोजन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत में पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुए बदलावों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद, हवाई अड्डा नेटवर्क और विश्वविद्यालयों की संख्या दोगुनी हो गई है जबकि मेट्रो कनेक्टिविटी 4 गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा 3 मुख्य स्तंभों व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने कहा है कि सुदृढ़ नीतिगत ढांचे और सरकार की नवोन्मेषी पहल से भारत विश्व के प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा देशों में से एक बन गया है। नई दिल्ली में 10वीं हरित और सतत विकास साझेदारी परिचर्चा श्रृंखला में नवीकरणीय ऊर्जा के जरिए ऊर्जा सुरक्षा पर अपने संबोधन में श्री सारंगी ने ये बात कही। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के तहत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को पारगमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकाबंदी हटा ली है। श्री वैंस ने व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अब हॉर्मूज जल डमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उन्होंने कहा कि ईरान समझौते पर बातचीत के लिए उनके स्विट्जरलैंड जाने की योजना है। उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो ईरान के साथ शांति समझौते लागू करने में बातचीत का नेतृत्व करेंगे। अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला 1-1 से बराबरी पर रहा। इससे दोनों टीमों के नॉकआउट स्टेज में पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद अमेरिका के लॉस एंजलिस स्टेडियम में ग्रुप बी के मैच में भारतीय समयानुसार रात 12:30 से स्विट्जरलैंड का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। उधर चीन के ग्वांगडोंग में विश्व टीम स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाते हुए भारत ने मौजूदा चैंपियन हांगकांग चीन को 3-1 से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, रात सुरमई लेकर हाजिर हूं मैं एक बार फिर नाज। समय हो रहा है 2:11 ही, और चूंकि सुबह होने में है काफी देर, तो चलिए छेड़ते हैं कुछ ऐसे जज्बात जो हैं तो सबके दिलों में, पर शायद हमने उन्हें कहीं किसी कोने में छिपा दिया है। और इस सफर में कुछ सदाबहार गीतों का रहेगा साथ, जिनके सहारे वो जज्बात यकीनन जुबान तक आ ही जाएंगे। दूरी ने और भी गहरा कर दिया मोहब्बत को, अब हर लम्हा सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल रहता है। पास थे तो गुफ्तगू में वक्त गुजर जाया करता था, दूर हो तो दिल में बस एक ही सवाल रहता है। फासले तो जिस्मों के होते हैं, दिलों के नहीं। तुम तो धड़कन बनकर आज भी मुझ में धड़कते हो, और भले ही लाख पहरे लगा दे ये जमाना, तुम बंद आंखों में खाब बनकर चमकते हो।

की रोशनी में तो दिल को बहला लेते हैं, मगर ये कमबख्त रात सारी हकीकत खोल देती है। जब खामोश हो जाता है सारा जमाना सोकर, तब उसकी यादें दिल के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। रात का ये अंधेरा मुझसे अक्सर पूछता है, कहाँ गया वो जो तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ता था। मैं मुस्कुराकर तकिए में सिर छुपा लेती हूँ और कहती हूँ कि वो तो एक हसीन ख्वाब था, बस एक हसीन ख्वाब।

चांद जरा थम कर गुजरना इस रात को, आज मेरी तन्हाई को उनका साथ मिला है, मुद्दतों बाद आई है ये हसीन घड़ी, जब धड़कनों को धड़कनों का पैगाम मिला है।

ऐ दिले नादान, तू भी अजीब जिद पर अड़ा है, जो मुकद्दर में नहीं उसी के पीछे पड़ा है। लाख समझाया इसे कि राहें जुदा हैं अपनी, मगर ये है कि उनकी एक झलक के लिए चौखट पे खड़ा है।

देखिए, रिश्ते चाहे कितने भी गहरे क्यों ना हो, एक समय के बाद आपसे बिछड़ ही जाते हैं और फिर धीरे धीरे दर्द भी जाता जाता है। क्या सच में? इसी पर कहा गया है कि अब उनसे मुलाकात नहीं होती। अरे मुलाकात छोड़िए, हमारी तो बात तलक नहीं होती। वो जो कहते थे कि हर दफा साथ निभाएंगे तुम्हारा, ये नजर लंबे अरसे से ढूंढ रही है उन्हें। अब तो यादों के अलावा उनसे कहीं बात

तुम हाथ पकड़ो मेरा और पूछो कि क्या चाहिए, मैं हाथ छुड़ा कर कहूं कि साथ तुम्हारा चाहिए, मैं हाथ छुड़ा कर फिर से थाम लूं उसे और कहूं कि तुम और तुम्हारा प्यार चाहिए, हर पल हर वक्त हर लम्हा सारी उम्र बस ये।

अच्छा, बांध कर तो नहीं रख सकता ना कोई भी कभी किसी को भी। जिसे जाना है वो तो कोई भी बहाना बनाकर चला ही जाएगा। तुम रोकते रहो अपनी बातों से, अपने आंसुओं से, उन्हें समझ नहीं आएगा। क्योंकि जो तय कर चुके हैं पहले से ही जाना, उन्हें तुम्हारा समझाना, तुम्हारा रोना कभी समझ नहीं आएगा।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों।

प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

जिसे हम कह सकें अपना कोई ऐसा नहीं मिला तेरे हम नाम मिलते हैं पर कोई तुझसा नहीं मिलता मोहब्बत के सफर में मुसाफिर हम मुसाफिर तुम हमें मंजिल नहीं मिलती तुम्हें रास्ता नहीं मिलता जिधर देखो उधर सच बोलने वाले ही मिलते हैं ताज्जुब है इस दौर में कोई झूठा नहीं मिलता और तलब है गर रोशनी की तुम्हें तो जलाओ खुद दिया राही बुझाने तिश्नगी प्यासे की दरिया नहीं मिलता

कभी कभी रो देना अच्छा होता है। रोने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। और जो लोग दिल की बातें बोल नहीं पाते, अपनी परेशानियां बयां नहीं कर पाते, उनके आंसुओं का निकलना तो बेहद जरूरी हो जाता है। ख्याल रखिएगा कि जो लोग रो नहीं पाते, वो अपने मन से कभी जीत नहीं पाते। इसीलिए ये मन कभी उलझनों में हो तो रो लीजिएगा, क्योंकि रोने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता।

शायद उनके रास्ते में हमसे बेहतर लोग ही पड़ गए, क्योंकि वो बेवफा तो न थे, मगर हाँ आगे जरूर बढ़ गए। और हाँ, किसी रिश्ते की उम्र इससे पता नहीं चलती कि वो कितने साल कितने महीने रहा हमारे साथ, बल्कि रिश्ते की उम्र तो इस बात से पता चलती है कि उनका कितना सामान पड़ा है हमारे पास।

अब से कुछ देर में सुनिएगा हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, उसके बाद इस रात की महफिल की मेजबान होंगी सुरभि। फिलहाल मुझे यानी नास को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।

0: The message I shared then at ViwaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
1: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की. इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न केवल भविष्योन्मुखी तैयारी कर रहा है बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और लोकहित आधारित विकास के जरिए उसे सक्रिय रूप से संवार रहा है. श्री मोदी ने फ्रांस यात्रा के आखिरी कार्यक्रम पेरिस में बोंजूर मोदी आयोजन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत में पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुए बदलावों का उल्लेख किया. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को हिंदी में एक विदाई वीडियो पोस्ट भेजा जिसमें उन्होंने श्री मोदी को प्रिय मित्र बताते हुए कहा कि फ्रांस आपसे प्यार करता है. फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश की यात्रा के लिए धन्यवाद दिया और इसे बेहद सफल बताया. उन्होंने फरवरी में उनसे दोबारा मिलने की उम्मीद भी जताई. श्री मैक्रों ने कहा कि फ्रांस उनसे प्यार करता है. प्रधानमंत्री स्लोवाकिया और फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं. इस बीच विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी. विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया. इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है. सरकारी ई मार्केट प्लेस ने नई दिल्ली में कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस साझेदारी का उद्देश्य देश भर में विशेष रूप से ग्रामीण और अल्प सुविधा वाले इलाकों में सरकारी खरीद अवसरों तक पहुँच बढ़ाना है. कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चार राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दाल और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी है. मंत्रालय ने कहा कि तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीद की जाएगी. अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के तहत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को पारगमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है. श्री वेंस ने व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अब हॉर्मुज जल डमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है. उन्होंने कहा कि ईरान समझौते पर बातचीत के लिए उनकी स्विट्जरलैंड जाने की योजना है. उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो ईरान के साथ शांति समझौते लागू करने में बातचीत का नेतृत्व करेंगे. अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला 1-1 से बराबरी पर रहा. इससे दोनों टीमों के नॉकआउट स्टेज में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है. उधर चीन के ग्वांगडोंग में विश्व टीम स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाते हुए भारत ने मौजूदा चैंपियन हांगकांग को हरा दिया. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi has projected India as a global hub of innovation and technology yesterday while addressing the ViwaTech 2026 summit in Paris. The Prime Minister said technology can lead to progress only when it is democratized. Mr. Modi urged global innovators to work with India and deliver for all. The Prime Minister highlighted that in the last decade, India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. Mr. Modi also held meetings

चलो, कठिन है राह गुजर थोड़ी दूर साथ चलो, बहुत बड़ा है सफर थोड़ी दूर साथ चलो। तमाम उम्र कहाँ कोई साथ देता है, तमाम उम्र कहाँ कोई साथ देता है, मैं जानता हूँ मगर थोड़ी दूर साथ चलो, बहुत बड़ा है सफर थोड़ी दूर साथ चलो। ये शब भी एक मुलाकात भी गनीमत है, किसे है कल की खबर थोड़ी दूर साथ चलो, बड़ा दूर है सफर थोड़ी दूर साथ चलो। अभी तो जाग रहे हैं चराग राहों के, अभी है दूर सहर थोड़ी दूर साथ चलो, थोड़ी दूर साथ चलो।

हमराही सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। बहुत खूब लिखा है किसी ने कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ, कि जन्नत मुबारक रहे आपको कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। भरी बज्म में

राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ, सजा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

हमराही प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। बहुत खूब लिखा है किसी ने कि चलो ये इश्क नहीं चाहने की आदत है, चलो ये इश्क नहीं चाहने की आदत है, कि क्या करें हमें एक दूसरे की आदत है। मैं क्या कहूं कि मुझे सब्र क्यों नहीं आता, मैं क्या कहूं कि मुझे सब्र क्यों नहीं आता, मैं क्या करूं कि तुझे देखने की आदत है, चलो ये इश्क नहीं चाहने की आदत है, कि क्या करें हमें एक दूसरे की आदत है।

जब तेरा दर्द, जब तेरा दर्द मेरे साथ वफा करता है, जब तेरा दर्द मेरे साथ वफा करता है, एक समंदर मेरी आंखों से बहा करता है, उसकी बातें मुझे खुशबू की तरह लगती हैं, फूल जैसे कोई सहरा में खिला करता है। मेरे दोस्त की पहचान यही काफ़ी है, वो हर शख्स को दानिश्ता खफा करता है, एक समंदर मेरी आंखों से बहा करता है, जब तेरा दर्द मेरे साथ वफा करता है। और तो कोई सबब उसकी मोहब्बत का नहीं, और तो कोई सबब उसकी मोहब्बत का नहीं, बात इतनी है कि वो मुझसे जफा करता है, तेरा दर्द जब मेरे साथ वफा करता है, फूल जैसे कोई सहरा में खिला करता है।

मेरे नाजुक सवाल में उतरो, एक हर्फ जमाल में उतरो, खूब चमकोगी आओ शमशीरो, मेरे जख्मों के जाल में उतरो, नक्शबंदी में भी आती है कोई सूरत ख्याल में उतरो, मेरे नाजुक सवाल में उतरो, एक हर्फ जमाल में उतरो।

हमराही प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और चलते चलते अंजाम की तरफ आखिरकार हम आ ही गए हैं। बहुत खूब कहा है किसी ने कि तू खुद भी नहीं और तेरा सानी भी नहीं मिलता, पैगाम तेरा तेरी जबानी भी नहीं मिलता, मैं बीच समंदर में हूँ और प्यास से बेताब, पीने को तो एक बूंद भी पानी नहीं मिलता, तू खुद भी नहीं और तेरा सानी भी नहीं मिलता, पैगाम तेरा तेरी जबानी भी नहीं मिलता।

और इसी गीत के साथ हमराही का ये सफर यहीं तक। 4:10 पर अरुणिमा में होगी हमारी और आपकी एक बार फिर मुलाकात। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और

0: समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत न केवल भविष्योन्मुखी तैयारी कर रहा है बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और लोकहित आधारित विकास के जरिए उसे सक्रिय रूप से संवार रहा है। श्री मोदी ने फ्रांस यात्रा के आखिरी कार्यक्रम में पेरिस में बोंजूर मोदी आयोजन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत में पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुए बदलावों का उल्लेख किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदी में एक विदाई वीडियो पोस्ट भेजा जिसमें उन्होंने श्री मोदी को प्रिय मित्र बताते हुए कहा कि फ्रांस उनसे प्यार करता है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश की यात्रा के लिए धन्यवाद दिया और इसे बेहद सफल बताया। उन्होंने फरवरी में श्री मोदी से दोबारा मिलने की उम्मीद भी जताई। प्रधानमंत्री स्लोवाकिया और फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा 3 मुख्य स्तंभों व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। सरकारी ई मार्केट प्लेस ने नई दिल्ली में कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इसका उद्देश्य देश भर में विशेष रूप से ग्रामीण और अल्प सुविधा वाले इलाकों में सरकारी खरीद अवसरों तक पहुंच बढ़ाना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा 4 राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दाल और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। मंत्रालय ने कहा कि तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत खरीद की जाएगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को पारगमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकाबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अब हॉर्मुज जल डमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उन्होंने कहा कि ईरान समझौते पर बातचीत के लिए उनकी स्विट्जरलैंड जाने की योजना है। उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे ईरान के साथ शांति समझौता लागू करने में बातचीत का नेतृत्व करेंगे। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में भी आज ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has projected India as a global hub of innovation and technology yesterday while addressing the Viva Tech 2026 summit in Paris. The Prime Minister said technology can lead to progress only when it is democratized. Mr. Modi urged global innovators to work with India and deliver for all. The Prime Minister highlighted that in the last decade, India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. Mr. Modi also held meetings with leading French business leaders to deepen economic and technological cooperation between the two countries. Prime Minister Modi has stated that India is not only preparing for the future but is actively shaping it through innovation, technology and people-driven development. Addressing the Indian community at the Bonjour Modi program in Paris yesterday, the final event of his France visit, the Prime Minister highlighted India's rapid transformation over the past 12 years.
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है.
1: Referring to the Bharat Innovates program, the Nice and Viva Tech in Paris, he said the world is witnessing India's growing innovation strength. Earlier, French President Emmanuel Macron thanked Mr. Modi in Hindi through a social media post. Later, the Prime Minister departed for India. Prime Minister Modi will disburse incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana PMVBRY today in New Delhi. Briefing the media about the Yojana in New Delhi, Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandaviya said, since August last year, more than 63 lakh employees have been brought into the formal workforce under PMVBRY, of whom nearly 30% are women. He further noted that over 80% of establishments incentivized under this scheme are small enterprises with fewer than 25 workers. He said the youth securing their first government job will receive an incentive of up to 15,000 rupees in 2 installments. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has approved large-scale procurement of pulses and oil seeds at minimum support price, MSP, for 4 states through video conferencing. The ministry said the procurement will be carried out under the price support scheme in Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. Uttar Pradesh has emerged as the biggest beneficiary for the summer 2026 season. Procurement of 48,298 metric tons of moong, 97,970 metric tons of urad and 41,718 metric tons of groundnut has been approved for the state. In Gujarat, procurement of 18,250 metric tons of moong has been cleared for the season. Mr. Chauhan also approved an increase in the moong procurement limit for Tamil Nadu under the Rabi marketing season 2025-26 from 885 to 990 metric tons, enabling the purchase of an additional 105 metric tons. New and Renewable Energy Secretary Santosh Kumar Sarangi has said that India has emerged as one of the world's leading renewable energy nations, backed by a robust policy framework and innovative government initiatives. Addressing a discussion on energy security through renewable energies under the 10th Green and Sustainable Development Partnership, GSDP Conversation Series in New Delhi yesterday, Mr. Sarangi highlighted India's significant progress in the renewable energy sector over the past decade. Defence Minister Rajnath Singh will lay the foundation stone for a 10,000 tons aluminium extrusion press at Yantra India Limited Ordnance Factory, Ambajari in Nagpur today. The proposed extrusion press will be a major national asset for the defence manufacturing sector. In snooker, India entered the final of the World Team Championship with a 3-1 win over defending champions Hong Kong China in Guangdong yesterday. The Indian pair of Pankaj Advani and Aditya Mehta dominated the semi-final. India will face the winners of the other semi-final between hosts China A and Korea in the title clash tomorrow morning. And that is the end of this news bulletin.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है अरुणिमा और मैं हूँ सुरभि एक बार फिर आपके साथ। आगाज कर रहे हैं प्रोग्राम का कुछ पंक्तियों के साथ। बहुत खूब कहा है किसी ने कि कुछ दूर

मैं जिंदगी का नक्शा तरतीब दे रहा हूँ, मैं जिंदगी का नक्शा तरतीब दे रहा हूँ, एक ताज़ा कार नगमा तरतीब दे रहा हूँ। लम्हों के सिलसिले में जीता रहा हूँ, लेकिन मैं अपना ख़ास लम्हा तरतीब दे रहा हूँ, मैं जिंदगी का नक्शा तरतीब दे रहा हूँ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

कुछ गीत और कुछ इंसान हमें याद दिलाते हैं कि हर इंसान की जिंदगी एक कहानी है। कुछ पन्ने संघर्ष के होते हैं तो कुछ सफलता के, कुछ खुशियों के तो कुछ निराशा के। लेकिन अपने सफर पर मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आज की चुनौतियां ही कल आपकी भी प्रेरणादायक कहानी बनेंगी।

अरुणिमा आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। जिंदगी जब तक है तब तक मौके भी हैं, हालात कभी भी हमारे या आपके मुताबिक हो ऐसा ज़रूरी नहीं और कई बार होता भी नहीं है, लेकिन अगर हम हौसला बनाए रखते हैं ये हमारी जीवन की सबसे असली ताकत होती है। इसीलिए आप कुछ भी करें, कोई भी काम करें, किसी चीज़ की भी शुरुआत करें, चाहे वो आपके काम से जुड़ी हुई हो या फिर आपके इश्क मोहब्बत या प्यार से जुड़ी हुई हो, शुरुआत तो आपको करनी ही होगी हौसला बनाए रखते हुए। और इसके अलावा हर सुबह अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आती है, इसीलिए रुकिए बिल्कुल भी नहीं, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि सपने भी उन्हीं के पूरे होते हैं जो मुश्किलों के बावजूद कोशिश करना नहीं छोड़ते हैं, है ना।

जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब तक हम कोशिश करना नहीं छोड़ते तब तक उम्मीद भी जिंदा रहती है। रास्ते कठिन हो सकते हैं लेकिन हर कदम हमें कुछ नया सिखाता है। इसलिए जो भी करना चाहते हैं पूरे दिल से करते रहिए, क्योंकि आपकी मेहनत और हौसला ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा।

और अब अरुणिमा में चलते चलते आपको सुनवाने जा रहे हैं कश्मीर की कली फिल्म का ये गीत रफी साहब की आवाज़ में।

और इसी के साथ अरुणिमा का सफर यहीं तक हमारी मुलाकात आपसे होगी 5:10 पर भोर सुहानी में अब सुरभि को दीजिए अनुमति कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। पेरिस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। उन्होंने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि एवियन में हुई G7 बैठक में उन्होंने विश्वास पर आधारित साझेदारियों के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व अनिश्चितता और व्यवधान के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में फ्रांस और भारत के बीच साझेदारी, विश्वास, स्थिरता और सहयोग का एक मजबूत स्तंभ बन गई है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और

समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदी में एक विदाई वीडियो पोस्ट में भेजा, जिसमें उन्होंने श्री मोदी को प्रिय मित्र बताते हुए कहा कि फ्रांस उनसे प्यार करता है। श्री मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस की यात्रा को बेहद सफल बताया। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी के सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा 3 मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों की आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है, जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों के आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वैंस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब होर्मुज जल डमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इस बीच ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा कि ईरान के दक्षिणी बंदरगाहों पर जहाजों का आवागमन सामान्य हो गया है, पर होर्मुज जलडमरू मध्य अभी ईरानी सेना की निगरानी और नियंत्रण में है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। मैं हूँ सुरभि आपके साथ। प्रोग्राम है भोर सुहानी। एक बार फिर आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कभी कभी जिंदगी ऐसे सवाल पूछती है जिसके जवाब तुरंत नहीं मिलते, लेकिन हर कठिन दौर हमें मजबूत बनाकर जाता है। भरोसा रखिए, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, जिंदगी में आगे रास्ता मंजिल जरूर मिलती है, क्योंकि हर संघर्ष के पीछे एक नई सीख और एक बेहतर कल आपका इंतजार कर रहा होता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।